0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आभा दुबे जी हाथरस से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में धैर्य कैसे रखें अगर हम बहुत कठिन परिस्थिति में हैं, वो कठिन परिस्थिति असहनीय हो रही है जिसमें हम चाहकर भी तुरंत परिवर्तन ना ला पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में निर्णय कैसे लें और कैसे?
2: भगवान का यदि भरोसा है तो हर परिस्थिति का परिवर्तन है। कोई भी परिस्थिति हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। यदि भगवान पर भरोसा है और भगवान का भजन है, भगवान का भजन नहीं है तो संसार के किसी व्यक्ति वस्तु स्थान से आपके धैर्य की सीमा नहीं रहेगी, धैर्य टूट जाएगा। और धैर्य तभी रहेगा जब भगवान का भरोसा है, निश्चित समझो भगवान का। हम आपको एक प्रसंग बता रहे हैं। महोबा से वाराणसी जा रहे थे तो महोबा में जिस भगत ने टिकट लेके दी, वो विशेष हमारा कोई परिचित नहीं था, ऐसे ही श्रद्धालु, तो उसने 3 स्टेशन की सार्वजनिक टिकट खरीद के दी। सार्वजनिक जो जनरल में जहां बैठा जाता है वो टिकट दी और बैठाला उसने हमको उसमें जिसमें AC आदि लगा होता है। हमें मतलब उसका ज्ञान नहीं कि टिकट का कोई फर्क होता है। इतने में थोड़ी दूर ही ट्रेन चली कि पूरा फोर्स चेक कर रहा था। हमसे बोले टिकट, हमने वो निकाली तो उसने कड़वे शब्दों में कहा, पढ़े लिखे हो तुम, ये टिकट 3 स्टेशन की थी, कब व्यतीत हो गया? जनरल में टिकट जनरल की थी और तुम बैठे कहां, कोच में हो, ऐसे खड़े हो जाओ। हम तो भगवान के सारे खड़े हो गए। हमको तो कोई ज्ञान था नहीं कि अब उनको तो अपनी वर्दी का और अपने उसका भाव था ही, वो अपनी सेवा कर रहे थे, ठीक है, उनका डांटना भी ठीक था। खड़े हुए तो अब हमारे मन में आया कि हो सकता है लोग दंड विधान करें, तो आंख मूंदा भगवान का चिंतन किया। तो एक आदमी ऊपर से उतरा, अंग्रेजी से उनसे बात की और पैसा दिया, इतनी बड़ी कागज की टिकट दी। बोले बाबा बैठ जा, क्या है? उस व्यक्ति से हमारा कोई परिचय नहीं है जो उतर के आता है, कौन है? भगवान। अंदर उसके भगवान ने प्रेरित किया, 1 मिनट में कार्य कर दिया। अगर हमारा भगवान पर भरोसा है तो बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी अशांति, बड़े से बड़े दुख का ऐसे निदान हो जाएगा, आप बिल्कुल विश्वास रखिए। हम अपने अनुभव की बात कहते, भले हमसे गलती हुई हो और हम समस्या में फंस रहे और भगवान को पुकारा तो भगवान उस समस्या का नाश कर देंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा, भगवान का स्मरण ही तत्काल समस्त विपत्तियों से रक्षा कर देता है। पर होता क्या है, हम लोगों का स्वभाव बना है संसार का आश्रय लेना। जैसे द्रौपदी जी को सभा में निर्वस्त्र करने के लिए दुशासन घसीट रहा है, उसी समय भगवान को क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि उनके मन में था मेरे 5 महाबली पति हैं, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जो अकेले विश्व को जीत सकते हैं। लेकिन उनकी आशा पे पानी फिर गया जब 5ों पतियों ने सर नहीं उठाया। तब आशा हुई कि भीष्म जैसे महाबली, द्रोणाचार्य जैसे आचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े धर्मात्मा बैठे, इनके बीच में मुझे कौन निर्वस्त्र करेगा? लेकिन फिर भी ये बात अधूरी रह गई द्रौपदी की। उन लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला कि रोका हो सभा में। द्रौपदी ने जब देखा कि कोई साथ नहीं दे रहा तो अपनी भुजाओं का बल, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ थे, लेकिन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, भला उससे द्रौपदी कब तक लड़ती रहती? फिर दांत का सहारा लिया। जब सब तरह से हार गई तब कहा, हे गोविंद, द्वारिकावास, जो ही भगवान को पुकारा, भगवान को कहीं आना थोड़ी था, वस्त्र ही बन गए, वस्त्रावतार हो गया, भगवान स्वयं वस्त्र बनकर के द्रौपदी के अंग पर विराजमान हो गए। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला मूर्छित हो गया, लेकिन यहां से पल्लू नहीं हटा पाया द्रौपदी का। यदि हम चाहे जैसे हो भगवान का भरोसा दृढ़ रखें तो आज भी भगवान है, आज भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान संभालते, भगवान न संभाले तो ऐसी प्रचंड माया है कि हम सब न जाने कहां बहकर खड़े हो जाए, लेकिन वो कृपा सिंधु है, वो हमारे अवगुणों को, हमारे दोषों को ना देखकर केवल अंदर के भाव को देखते हैं कि ये मेरे से जुड़ा है, ये मेरा अपना है, बस इसी बात से भगवान कल्याण कर देते हैं। रात न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरत सहबार ही कि यदि चूक हो जाए, गलती हो जाए, अपराध बन जाए तो भगवान उधर नहीं देखते। भगवान ये देखते हैं कि ये मेरा है, इसने मुझे अपना माना है, बस इस बात से तो कोई भी विपत्ति, कोई भी शोक, हम धैर्य पूर्वक इंतजार करें भगवान की कृपा का, किसी अन्य का आश्रय न ले। अगर अन्य का आश्रय लेंगे तो धोखा हो जाएगा, केवल भगवान का आश्रय तो आपको चमत्कार दिखाई देगा कि बड़ी से बड़ी समस्या को कैसे भगवान ने ऐसे ही फूंक में हटा दिया। बड़ी से बड़ी समस्या, जो भारी विपत्ति जीवन को नष्ट कर सकती है, भगवान ने ऐसे बचा लिया। तो भगवान का भरोसा दृढ़, भगवान का आश्रय दृढ़, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय ना हो, तो इसी जन्म में आप देखेंगे जैसे भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की, मीरा जी की रक्षा की, ऐसे भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं और करेंगे, यदि दृढ़ विश्वास अन्य आश्रय न हो। यदि अन्य आश्रय हुआ तो आप पहचान नहीं पाएंगे भगवान की कृपा को, अगर केवल भगवान का भरोसा तो आप देख लेंगे आपके जीवन में एक नया चमत्कार होगा, आपको दृढ़ विश्वास होगा कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
8: क्यों, क्या हुआ है?
7: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
8: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
7: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
8: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है, मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें, अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वनगमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18744।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
7: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
8: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
9: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9056 59536 या 9056 57902। ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
5: आजा रे।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोरायसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। अलग अलग हादसों में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का DM ने किया निरीक्षण। जनता दरबार में DM और SP कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद। एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर किया गया हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। और पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिले में कई अलग अलग जगहों पर हादसे हुए जिसमें लगभग आधा दर्जन लोगों के मौत की खबर आई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। एक मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हेमू छपरा गांव से आया, जहां बिजली के करंट के चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक तेज धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव में गए थे और पेड़ पर पहले से ही टूटा हुआ बिजली का तार गिरा हुआ था, जिसके चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बिजली के करंट लगने से फुलवरिया, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली का प्लग लगाते समय करंट लगने से एक किशोर की यहां दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में भी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। इसके अलावा गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुबे खरिया गांव में भी एक 12 वर्षीय बच्ची रिया कुमारी को सांप ने डस लिया, इसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह दुबे खरिया के प्रमोद यादव की पुत्री थी, खेल रही थी तभी जहरीले सांप ने काट लिया, बच्ची अचेत हो गई। परिजन हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन रास्ते में बच्ची की मौत हो गई। इसके अलावा माधोपुर थाना क्षेत्र के सरया नरेंद्र गांव में भी एक मासूम बच्चे को कोबरा सांप ने काट लिया। इस बच्चे का नाम अंकुर कुमार है और यह रविंद्र कुमार शर्मा का 7 वर्षीय पुत्र बताया जा रहा है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव में घर के बाहर खेल रहे एक 8 वर्षीय मासूम को सांप ने डस लिया। आनन फानन में इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यह बच्चा महुआ गांव के रुदल राम का 8 वर्षीय पुत्र रवीश कुमार बताया जा रहा है। परिजन घटना के बाद इस बच्चे को बरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान इस बच्चे की भी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद सभी शवों को सौंपा है। बरसात के वजह से सर्पदंश का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार बरसात और उमस भरे मौसम में सांप अधिक सक्रिय हो जाते हैं और भोजन तथा सुरक्षित स्थान की तलाश में घरों के आसपास भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में सर्पदंश की घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है। लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की गई। इधर दिघवा दुबौली में एक रिश्तेदार के घर से लौटने के दौरान मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 22 वर्षीय मोहित कुमार सिंह पिता ओम प्रकाश सिंह जो बैकुंठपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इसका साथी युवक मंजीत कुमार जो दूधारा थाना गोरेया कोठी जिला सिवान का रहने वाला है, यह गंभीर रूप से जख्मी है, इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय मोहित की मौत हो गई। घटना के बाद मोहित के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां छात्रावास की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की। छात्रावास परिसर, आवासीय कक्षों, स्वच्छता व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाओं का उन्होंने निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने छात्रावास की लाइब्रेरी का भी अवलोकन किया। अध्ययनरत छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने लाइब्रेरी में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही इन्वर्टर लगाने का निर्देश दिया, ताकि बिजली बाधित होने की स्थिति में भी छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो सके। सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत जनता दरबार का आयोजन कर जिला पदाधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के अंतर्गत संचालित सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत उपस्थित फरियादियों से क्रमवार संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुनने के बाद संबंधित विभागों के अधिकारियों को डीएम ने त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निष्पादन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार मिश्रा ने पुलिस से संबंधित शिकायतों को लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद संबंधित अधिकारी को उन्होंने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कटिया थाना क्षेत्र के बरई बेली गांव में एक गिरफ्तार आरोपी प्रमोद यादव को छुड़ाने के लिए उसके समर्थकों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। आरोपी को छुड़ाकर हमलावर फरार भी हो गए। इस हमले में एक पुलिस पदाधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मामले में 13 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और अब मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी प्रमोद यादव को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। छापेमारी के बाद पुलिस ने आरोपी प्रमोद यादव को पकड़ भी लिया, परंतु उसके समर्थकों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया और पुलिस के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिसई गांव में देर रात पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग के दौरान सामने से आ रही नीलगाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में वाहन पर सवार 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सिरीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 387 लीटर देशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक कार भी जब्त की गई। पकड़ा गया आरोपी जनार्दन कुमार पिता गणेश साकिन ओझा बरथरी थाना उरुआ जिला गोरखपुर और दूसरा सुमित पांडे साकिन मिथिया बेलडारपुर थाना बांस गांव जिला गोरखपुर निवासी हैं। इन दोनों को पुलिस ने शराब के साथ पकड़ा है। इनकी गाड़ी भी जब्त की गई है। इधर भोरे थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी फरार चल रहा था, तभी पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने छापेमारी कर अभियुक्त अनिल उर्फ राम बिहारी ठाकुर पिता दयानंद ठाकुर साकिन हरामपुर थाना गौरी बाजार जिला देवरिया को विधिवत गिरफ्तार किया है और इसके विरुद्ध अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस आरोपी पर 29/7/2022 में ही पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस इसे ढूंढ रही थी। जिलाधिकारी ने सदर प्रखंड के चौराव पंचायत सरकार भवन में आयोजित टीबी स्क्रीनिंग कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की प्रगति, लाभार्थियों के पंजीकरण, जांच की प्रक्रिया तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया और उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों से स्क्रीनिंग अभियान की प्रगति की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर पेंशनर्स एसोसिएशन जिला गोपालगंज के द्वारा मुकेश कुमार सिंह क्रिकेट खिलाड़ी गोपालगंज के आगमन पर बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ उनको परिजात यानी हरसिंगार का पौधा तथा अंग वस्त्र और पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उनके क्रिकेट खेल प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। पेंशनर एसोसिएशन के नेताओं ने कहा कि यह जिला ही नहीं बिहार के लिए गौरव की बात है कि ऐसे खिलाड़ी हमारे गोपालगंज के निवासी हैं। सभी लोगों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसमें जिला अध्यक्ष सह महामंत्री रामेश्वर सिंह और जिला मंत्री रामायण सिंह ने उनके खेल प्रतिभा पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने 303 लीटर विदेशी शराब के साथ एक कार सवार को नगर थाना क्षेत्र के चैन पट्टी में NH 27 पर पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस मामले में कार और शराब को जब्त किया गया है और इसमें तस्कर के गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। साथ ही इस तस्करी के पूरे नेटवर्क को भी खंगालने में जुटी हुई है। पुचका गांव थाना की पुलिस ने पशु तस्करी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाते हुए आज ग्राम गुरुमहा स्थित जीन बाबा स्थान के पास एक गाड़ी को पकड़ा, जिस 7 मवेशी क्रूरता पूर्वक रस्सी से बांधकर तस्करी के लिए जा रहे थे। पुलिस ने गाड़ी और मवेशियों को जब्त किया है। इस संदिग्ध पिकअप को रोकते समय पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मवेशी और वाहन को जब्त कर अब आगे की कार्रवाई कर रही है। कटिहार थाना की पुलिस ने पुलिस की टीम पर हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी का नाम दिनेश यादव है, जो श्री किशुन यादव का पुत्र है और बरई बेली गांव का रहने वाला है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जादवपुर थाना की पुलिस ने 390 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस ने बरई पट्टी 3 मुहानी के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां तस्कर को पकड़ा गया। आरोपी का नाम संदीप कुमार है, जो सिपाही बिंद का लड़का है और बरई पट्टी का ही निवासी बताया जा रहा है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने भी 891 लीटर देशी शराब को बरामद किया और एक पिकअप गाड़ी को जब्त की गई। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने तस्कर को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया है। इधर CBCS के तहत लिए जा रहे स्नातक 2026-30 नामांकन में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गोपालगंज के कमला राय महाविद्यालय में आई हेल्प यू काउंटर लगाया गया है। एडमिशन के दौरान कॉलेज पहुंचने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय छात्र शक्ति पत्रिका के संयोजक अनीश कुमार ने कहा कि काउंटर पर नामांकन संबंधित आवश्यक दस्तावेजों की सूची, स्टेपलर, गोंद, पेन, कागज सहित कई आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है। काउंटर लगाने का उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों को इधर उधर ना भटकना पड़े और उनका नामांकन आसानी से हो सके। जिला संयोजक हरिओम राय ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष नामांकन के समय हेल्प डेस्क लगाकर बच्चों का सहयोग करता है। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अलग अलग हादसों में लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का DM ने किया निरीक्षण। जनता दरबार में DM और SP कार्यालय में सुनी गई जनता की फरियाद। एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर किया गया हमला, 3 पुलिसकर्मी घायल। और पुलिस की गाड़ी पेड़ से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, 4 पुलिसकर्मी जख्मी। इसके साथ ही रेडियो रिंझिन से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में। क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
12: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
13: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
14: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-46651 या 97-097-06-575।
15: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
16: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
16: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
17: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
18: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी दोस्त RJ। जब घर में नन्ना मेहमान आता है तो खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आ जाती है, बच्चे की सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है। आजकल विज्ञापन बहुत आगे बढ़ गया है, अब नवजात शिशु की जांच यानी नवजात स्क्रीनिंग के जरिए हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई छुपी हुई बीमारी तो नहीं है। ये टेस्ट बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर किया जाता है। अगर कोई बीमारी समय रहते पकड़ ली जाए तो उसका इलाज शुरू हो सकता है और बच्चे को आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय नवजात स्क्रीनिंग दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि अगर शुरुआत सही हो तो आगे जिंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए, आज इसी जरूरी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे अपने सेहतिया भैया और टिकन भाभी।
19: देखो भाई, जब बीज अच्छा बोओगे तभी तो पेड़ मजबूत निकलेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बीमारियां छुपी हो सकती हैं। अगर बीमारियों को उसी वक्त पकड़ लिया जाए तो इलाज आसान हो जाता है।
20: और नवजात स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत छोटा होता है, आसानी से हो जाता है, मगर इसके फायदे जीवन भर मिलते हैं।
19: हाँ, लेकिन कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और इसका असर बाद में दिखता है।
20: बिल्कुल, देखिए, पड़ोस के गांव की बात है। फूलमती की बहू को बेटा हुआ, सब खुश थे, पर बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पा रहा था, बार बार कपकपी हो रही थी। लोग बोले कि ठंड लग गई है, नजर लग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि बच्चे को जन्म से ही थायराइड की बीमारी थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर शिशु की जन्म के समय जांच करवाई होती तो बीमारी का पता चल जाता और इलाज समय पर शुरू हो जाता। अब बच्चा ठीक तो है लेकिन दवाइयों पर चल रहा है। सोचिए अगर पहले ही नवजात स्क्रीनिंग हो जाती तो जिंदगी आसान हो जाती।
1: सेहतिया भैया, आखिरकार बच्चे को पैदा होते ही नवजात स्क्रीनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है?
21: जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में कई बीमारियां पता नहीं चलती। स्क्रीनिंग में डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं, कानों की सुनने की क्षमता देखते हैं और दिल की धड़कन जांचते हैं। अगर कोई समस्या जल्दी पकड़ में आ जाए तो उसका इलाज आसान हो जाता है। इस टेस्ट से बच्चे को गंभीर बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है।
1: टीकन भाभी, नवजात शिशु की जांच कब करवानी चाहिए?
20: बच्चे के जन्म के बाद जब वो 1-2 दिन का होता है तब नवजात स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा एकदम ठीक है या नहीं।
1: अगर कोई बच्चा अस्पताल में पैदा ना हुआ हो तो भी ये जांच करवानी चाहिए?
20: बिल्कुल, ऐसे में डॉक्टर से बात करके जांच करवानी चाहिए। इससे परेशानी जल्दी पकड़ में आ जाती है और सही इलाज हो सकता है। पर सही प्रसव के लिए सरकारी अस्पतालों में जन्म देकर बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
1: सेहतिया भैया, नवजात शिशु की जाँच कैसे होती है?
21: आरजी, नवजात स्क्रीनिंग 3 तरीके से होती है। सबसे पहले बच्चे की एड़ी से कुछ बूंद खून लेकर लैब में भेजा जाता है ताकि किसी गंभीर बीमारी का जल्दी पता चल सके। फिर सुनने की जांच होती है। इसके लिए कानों में छोटे ईयरफोन लगाए जाते हैं और देखा जाता है कि बच्चा आवाज पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। और एक तीसरा तरीका है दिल की जांच, जिसमें एक खास मशीन से बच्चे के खून में ऑक्सीजन की मात्रा देखी जाती है। इससे दिल की कोई समस्या हो तो जल्दी पकड़ में आ जाती है।
1: टिकन भाभी, अगर किसी नवजात शिशु की जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो क्या किया जाता है?
20: यदि किसी नवजात शिशु के जांच के नतीजे सामान्य ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादातर मामलों में इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि बच्चे की और जांच करनी होगी ताकि डॉक्टर को पूरी जानकारी मिल सके। पहला टेस्ट सिर्फ शुरुआती जांच होती है जिससे डॉक्टर को संकेत मिलते हैं कि आगे क्या करना चाहिए।
1: तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बीमार है?
20: बिल्कुल सही, कई बार शुरुआती जांच में कोई गड़बड़ परिणाम आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कोई बीमारी है। इसीलिए डॉक्टर आगे एक और टेस्ट करने की सलाह देते हैं जिसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। यह ज्यादा सटीक होता है और इसमें पता चलता है कि वास्तव में कोई समस्या है या नहीं। अगर डायग्नोस्टिक टेस्ट के नतीजे सामान्य आते हैं तो आगे किसी और जांच की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर इसमें कोई गड़बड़ी दिखती है तो डॉक्टर अगला कदम बताते हैं। वो आपको सही इलाज और बच्चे की सेहत को बेहतर रखने के लिए जरूरी सलाह देते हैं।
1: सेहतिया भैया, अगर परिवार में एक बच्चे को कोई बीमारी हो तो क्या दूसरे बच्चे को ये बीमारी हो सकती है?
21: देखिए, कई बीमारियां वंशानुगत होती हैं, यानी माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए आती हैं। अगर किसी परिवार में एक बच्चे को कोई वंशानुगत बीमारी है तो उसके भाई बहन को भी वही समस्या होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन हर बीमारी ऐसी नहीं होती। कुछ बीमारियां सिर्फ उसी बच्चे में हो सकती है जबकि उसके भाई बहन बिल्कुल ठीक रह सकते हैं।
1: अगर किसी बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो और माता पिता दूसरा बच्चा चाहते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए?
21: अगर ऐसा हो तो माता पिता को किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर समझाते हैं कि बीमारी परिवार में कैसे आती है और अगला बच्चा इससे प्रभावित होगा या नहीं। डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा तरीका होता है ताकि परिवार सही फैसला ले सके।
1: तो क्या हर स्वास्थ्य समस्या वंशानुगत होती है?
21: नहीं आरजी, कुछ बीमारियां वंशानुगत नहीं होती, जैसे सुनने की समस्या जो कभी कभी गर्भावस्था के दौरान किसी संक्रमण से हो सकती है। ऐसे स्थिति में दूसरी गर्भावस्था में यह समस्या होने की संभावना कम होती है। इसलिए हर बीमारी को समझना जरूरी होता है ताकि सही इलाज और सावधानी बरती जा सके।
1: तो मतलब डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए?
21: डॉक्टर सही जानकारी और सुझाव देते हैं, इससे माता पिता को बच्चे की सेहत को लेकर बेहतर फैसला लेने में मदद मिलता है।
1: टिकन भाभी, आपने बताया था कि नवजात स्क्रीनिंग बहुत जरूरी होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे की स्क्रीनिंग से कोई बीमारी पकड़ी गई हो और फिर वो ठीक हो गया?
20: हाँ, मेरे पड़ोस की सुनीता के बेटे के साथ ऐसा ही हुआ था। जब बच्चा पैदा हुआ तो अस्पताल में उसकी स्क्रीनिंग हुई। जांच से पता चला कि बच्चे के शरीर में कार्बनिक अम्ल ज्यादा जमा हो रहा है। ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर खाने को ठीक से पचा नहीं पाता। अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा जाता तो बच्चे की सेहत बिगड़ सकती थी।
1: फिर क्या किया गया?
20: जैसे ही ये बीमारी पता चली, डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्होंने सुनीता को बताया कि बच्चे की डाइट में खास ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ दवाएं भी दी। धीरे धीरे सही इलाज और देखभाल से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया।
1: तो मतलब अगर स्क्रीनिंग ना हुई होती तो बीमारी पकड़ में ही नहीं आती?
20: बिल्कुल सही कहा, अगर ये टेस्ट नहीं हुआ होता तो बीमारी का पता ही नहीं चलता और बच्चा बहुत परेशानी में आ सकता था। इसीलिए स्क्रीनिंग हर नवजात के लिए बहुत जरूरी होती है।
1: सेहतिया भैया, आपकी जानकारी में कभी ऐसा हुआ है किसी बच्चे की बीमारी स्क्रीनिंग से पता चली हो और फिर वो ठीक हो गया हो?
21: हाँ अर्जुन, मेरे दोस्त विजय की बेटी के साथ ऐसा ही हुआ था। जब वो पैदा हुई तो अस्पताल में उसकी नवजात स्क्रीनिंग हुई। शुरू में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जांच के नतीजे आए तो डॉक्टरों ने बताया उसे फैटी एसिड की बीमारी है।
1: ये कौन सी बीमारी होती है?
21: देखिए, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, इसे हम खाने पीने की चीजों से लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उनका शरीर वसा को ठीक से पचा नहीं पाता। इससे बच्चों को जरूरी ऊर्जा नहीं मिलती और उन्हें कमजोरी महसूस होती है।
1: तो फिर विजय ने क्या किया?
21: रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब ने विजय को समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, सही इलाज से बच्ची बिल्कुल ठीक हो सकती है। उन्होंने कुछ दवाएं और खास डाइट सुझाई। विजय ने पूरी सावधानी बरती और धीरे धीरे बच्ची पूरी तरह स्वस्थ हो गई।
1: टिकन भाभी, मैंने सुना है कि कुछ बच्चों को अमीनो एसिड से जुड़ी कोई समस्या होती है, ये क्या है?
0: अरे, ये एक खास तरह की बीमारी होती है जिसमें बच्चे का शरीर अमीनो एसिड को ठीक से नहीं पचा पाता। ये एसिड हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जब शरीर इसे सही तरीके से नहीं प्रोसेस

0: तरह की दवाएं और देखभाल बताते हैं। कभी कभी हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को खास ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर इलाज समय पर शुरू कर दिया जाए तो बच्चा सामान्य तरीके से बढ़ सकता है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है।
1: भाभी, मेरे दोस्त के बच्चे में एनीमिया पाया गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे हीमोग्लोबिन की समस्या है। ये क्या होता है और क्या इसे पहले से पहचाना जा सकता है?
2: हीमोग्लोबिन की समस्या खून से जुड़ी बीमारी है, मतलब शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। लेकिन नवजात स्क्रीनिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा इस बीमारी से प्रभावित है या नहीं। अंश का जन्म हुआ तो उसकी माँ ने डॉक्टर की सलाह पर नवजात स्क्रीनिंग कराई। टेस्ट में पता चला कि उसे हीमोग्लोबिन की बीमारी है। बीमारी पकड़ में आते ही डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। अगर ये बीमारी समय रहते पकड़ में ना आती तो बाद में अंश को गंभीर परेशानी हो सकती थी।
1: भैया, जरा एक बात बताइए, मेरे पड़ोसी के नवजात बच्चे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर बोले कि उसे गंभीर जन्मजात हृदय रोग है। ये क्या होता है?
0: कुछ बच्चों में हृदय रोग जन्म से ही होता है। इसमें दिल की बनावट में गड़बड़ी होती है जिससे खून शरीर में सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है।
1: मतलब बच्चा दिखने में ठीक होता है पर अंदर से बीमार होता है।
0: बिल्कुल, शुरू शुरू में बच्चा एकदम ठीक लग सकता है लेकिन कुछ ही दिनों में सांस लेने में दिक्कत, दूध पीने में परेशानी जैसी चीजें दिखने लगती है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर नवजात स्क्रीनिंग समय पर हो जाए तो इस बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाता है।
1: और क्या इसका इलाज है?
0: हाँ है, लेकिन जल्दी पकड़ में आना जरूरी है। चलो तुम्हें छोटे फैजान की आप बीती सुनाता हूँ। शहर के अस्पताल में फैजान पैदा हुआ था। नवजात स्क्रीनिंग के तहत उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में पता चला फैजान के शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम है। तुरंत और टेस्ट किए गए और पता चला कि उसे हृदय रोग है। फिर सर्जरी की गई और फैजान एकदम ठीक है, बिल्कुल किसी आम बच्चे की तरह।
1: मेरे मौसी का पोता अभी कुछ महीने का है पर आवाज पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। माँ कुछ भी बोले बच्चा पलटकर नहीं देखता। डॉक्टर बोले कि सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। ये नवजात बच्चों में भी होता है क्या?
2: हाँ भैया, होता है। कुछ बच्चे जन्म से ही ठीक से सुन नहीं पाते लेकिन बाहर से देखने पर वो तो बिल्कुल आम बच्चों जैसे ही लगते हैं।
1: पर भाभी, अगर बच्चा कुछ बोले ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे कि उसे सुनाई देता है या नहीं?
2: बस यही गलती होती है। अगर हम बच्चे के बोलने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। नवजात स्क्रीनिंग में अब सुनने की जांच भी होती है। बच्चा जब पैदा होता है तब अस्पताल में एक छोटा सा मशीन कान में लगाते हैं। मशीन खुद पता लगा लेती है कि बच्चे के कान ठीक से आवाज पकड़ रहे हैं या नहीं। न बच्चा रोता है न कोई तकलीफ होती है। हर नवजात बच्चे का हियरिंग टेस्ट जरूरी है। इससे बच्चे को समय पर इलाज मिल सकता है और वो बाकी बच्चों की तरह बोल सुन सकते हैं।
1: भैया भाभी, आज तो आप दोनों से बड़ी काम की बात जानने को मिली। सच में नवजात स्क्रीनिंग हर बच्चे के लिए जरूरी होता है।
2: बच्चा जब दुनिया में आता है तब उसकी कुछ जरूरी जांच करवा लेने से आगे चलकर बड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल, जैसे कि दिल का रोग, थायराइड की गड़बड़ी, सुनाई न देना और अन्य कई छिपी बीमारियां नवजात स्क्रीनिंग से जल्दी पकड़ में आ जाती है। इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो बच्चा पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: मतलब ये हुआ कि बच्चा चाहे बिल्कुल ठीक दिखे फिर भी उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना चाहिए।
2: हाँ भैया, बीमारी बाहर से थोड़ी ही दिखती है, अंदर ही अंदर नुकसान कर जाती है। यही तो हम सबको समझना है।
0: और ये जांच ज्यादा महंगी भी नहीं होती। सरकार कई अस्पतालों में ये सुविधा फ्री में दे रही है। बस जागरूक रहना जरूरी है।
1: तो दोस्तों, आज से ही तय कीजिए कि अगर घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नवजात स्क्रीनिंग जरूर करवाए ताकि वो बच्चा आगे चलकर हंसता खेलता सेहतमंद जीवन को जी सके। तो दोस्तों, आज के सेहत सही लाभ कई में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में।

0: सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97,714-86164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
0: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
0: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
0: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला। ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई। मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है। सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: इन सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
12: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
11: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
12: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
11: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
13: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
14: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
13: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
14: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
13: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
14: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: उसे।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
4: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
3: तो देर मत कीजिए,
4: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86034486652 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर हर महा

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमी कंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास सराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को दूसरे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रूपए के सौदे स्वीकृत, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर छाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है। अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर।

0: ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
1: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
0: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 1100 1।

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
12: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8211 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
5: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6252 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबेर ही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
6: सभी प्रकार के नशा, जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्रपतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
5: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
7: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता,
5: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड, थावे रोड, भी मार्केट के बगल में, कृष्णा जी के मकान में।
7: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
5: और 90971602।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोधगया में आज से शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पूर्णिया देश भर में पहले स्थान पर, सीतामढ़ी भी शीर्ष 5 में शामिल। और प्रदेश में मानसून की कम सक्रियता से गर्मी और उमस बढ़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। गया जिले के बोधगया में आज से 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे।
1: बोध गया के कन्वेंशन सेंटर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय, अन्य न्यायाधीश और सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक समेत 200 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड और बिहार जुडिशियल एकेडमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें नए आपराधिक कानूनों की बारीकियों और उन्हें लागू करने में पुलिस तथा न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय पर मंथन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बोधगया से धर्मवीर भारती।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों के राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने हाल के संघर्ष में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। मतलब है कि यह अंतिम संस्कार 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हवाई हमलों में खामेनेई की मृत्यु के बाद हो रहा है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में पूर्व नेता को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पूर्णिया जिले के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में पूर्णिया ने देश के 112 आकांक्षी जिलों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं सीतामढ़ी जिला इस सूची में देश भर में तीसरे स्थान पर है। अररिया 108वें स्थान के साथ आखिरी 5 जिलों में शामिल है। रैंकिंग में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख सूचकांकों के आधार पर विभिन्न जिलों में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अंक दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी सेवकों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता के नियमों में संशोधन किया है। इन भत्तों के लिए अब केंद्र सरकार की दरें लागू होंगी। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब सरकारी काम से विदेश जाने वाले कर्मचारी को यात्रा भत्ता विदेश मंत्रालय द्वारा तय दरों के अनुसार मिलेगा। नए नियमावली के तहत बिहार यात्रा भत्ता नियमावली 1949 के महत्वपूर्ण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार की निर्धारित दरों के अनुसार भुगतान होता था। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और नवगठित राजकीय डिग्री कॉलेजों में संविदा के आधार पर 3,687 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि अभ्यर्थी समर्थ पोर्टल से 15 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इन पदों के लिए 20 और 27 जुलाई को साक्षात्कार लिया जाएगा। सभी प्रक्रियाओं के बाद 7 अगस्त तक चयनित अभ्यर्थियों को योगदान देना होगा। श्री चौधरी ने बताया कि यह नियुक्ति 6 विषयों, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में होगी। लोकभवन ने स्पष्ट किया है कि पीएचडी अध्यादेश और विनियमन के तहत पीएचडी गाइड के सेवानिवृत्त होने पर भी गाइड 70 वर्ष की उम्र तक शोधार्थी को शोध करा सकेंगे। नए अध्यादेश के नियमों के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 3 वर्ष से कम का समय शेष है वे अपने पर्यवेक्षण में नए शोधार्थियों को पंजीकृत नहीं कर सकेंगे। लोकभवन ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र पहले से इन शिक्षकों के अधीन पंजीकृत हैं उनका शोध कार्य नहीं रुकेगा। ऐसे शिक्षक 70 वर्ष की आयु तक सह पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और गुमराह करने वाला है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए हैं। इन ट्रायल में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास बुरा असर नहीं देखा गया। परीक्षणों में पैसेंजर कारों से लगभग 40,000 किलोमीटर और दोपहिया वाहनों से 20,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इसमें कहा गया है कि माइलेज पर ईंधन के प्रकार के अलावा गाड़ी चलाने का तरीका, रखरखाव, टायर का दबाव, अलाइनमेंट और एयर कंडीशनिंग का लोड जैसी कई और चीजों का भी असर पड़ता है। केंद्र सरकार ने बैट BMS, एपॉक IIN और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम यात्रियों और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सलाह पर पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय की नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राज्यों के सहयोग से पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सके, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की एक कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: मानसून की कम सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उमस और गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रखी है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। अररिया पुलिस लाइन केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह में सिपाहियों को सफलतापूर्वक बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सेवा की शपथ दिलाई गई। पूर्णिया प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक ने पास आउट परेड का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भागलपुर के समीक्षा भवन में राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत आम लोगों की समस्याओं की सुनवाई की गई। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में लंबित पेंशन भूमि विवाद समेत विभिन्न मामलों से जुड़े 22 आवेदनों का निष्पादन किया गया। इधर भागलपुर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोपालपुर और इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत तटबंध के मरम्मत कार्य को लेकर प्रसारित खबर तथ्यहीन और भ्रामक है। जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि 30 जून को जिला पदाधिकारी और अपर समाहर्ता आपदा ने स्थल निरीक्षण किया है। इस संबंध में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नौगछिया के अभियंता ने बताया कि 15 जुलाई तक आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिचि पांडे ने डुमरा में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय के शुरू होने से सैनिक कल्याण से संबंधित सभी प्रमुख सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी विंग कमांडर यूके त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके आश्रित उपस्थित थे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में प्रदेश में 23 से 26 जुलाई के बीच राज्य महिला फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि ये प्रतियोगिता के मैच पटना, मुंगेर और बेगूसराय में खेले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस लीग का उद्देश्य राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा नई टाउनशिप में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 12 टाउनशिप के विकास पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा हुडको। दैनिक जागरण ने लिखा है लालू राबड़ी को मिलेगी जेड श्रेणी सुरक्षा। दैनिक भास्कर लिखता है सरकार ने 3 चीनी ऐप हटाए, अब बीच रास्ते में बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। प्रभात खबर ने लिखा है 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, सीतामढ़ी और वैशाली में 2 अपराधियों को लगी गोली। आज अखबार की सुर्खी है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा इंडो नेपाल सीमा पर रखें निगरानी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राज्य में 6,000 करोड़ के निवेश से 3,000 रोजगार के अवसर होंगे सृजित। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बोधगया में आज से शुरू हो रहा है राज्य स्तरीय सम्मेलन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में हुए शामिल। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में पूर्णिया देश भर में पहले स्थान पर, सीतामढ़ी भी शीर्ष 5 में शामिल। और प्रदेश में मानसून की कम सक्रियता से गर्मी और उमस बढ़ी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
11: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
11: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
10: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
14: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
13: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
14: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
13: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
15: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
16: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
15: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
16: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
15: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
16: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
17: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
18: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
19: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
17: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
19: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
17: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
19: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
17: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
19: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
17: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
19: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन।
20: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-21 8029-94-21 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
21: हेलो
22: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
21: आपको नमस्कार
22: जी, नाम बता दीजिए।
21: लाल बहादुर प्रसाद
22: जी। कैसे हैं लाल बहादुर जी?
21: ठीक है, आप कैसे हैं?
22: हम भी बढ़िया हैं। तो लाल बहादुर जी, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
21: श्री रतन प्रसाद दवासी रात्रि देवी
22: जी। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है लाल बहादुर जी आपकी?
21: प्लस वन
22: तक। तो आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
21: जी
22: जी। तो लाल बहादुर जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़, बी पत्ती, सी तना। आपका समय श्रोता है अब।
1: जड़ में होता है।
0: श्योर है?
1: श्योर है।
0: लॉक कर दे?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए लाल बहादुर जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जड़ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा पत्ती।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
2: मैं हीर मकरियाल बदली से, नाम आर्यन गुप्ता।
0: आर्यन जी कहाँ से बात कर रहे हैं, एक बार फिर से बताइए।
2: हीर मकरियाल बदली।
0: ये कहाँ पड़ता है आपका गाँव?
2: सिवान में।
0: सिवान में, तो क्या करते हैं आर्यन जी आप?
2: पढ़ाई करता हूँ अभी।
0: अच्छा, किस क्लास की पढ़ाई करते हैं आप?
2: सेवन।
0: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: अभी तो अच्छी चल रही है।
0: अभी अच्छी चल रही है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं?
2: नहीं
0: किए हैं। तो आपको हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का नंबर कहाँ से मिला?
2: मामी से।
0: इससे पहले इसका प्रसारण सुने हैं आप?
2: नहीं,
0: प्रसारण भी नहीं सुने हैं। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो आप तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ।
0: आप जहाँ हैं वहाँ अकेले हैं ना, शांति है ना? ऐसा नहीं है ना कि कोई बीच में आकर डिस्टर्ब करेगा।
2: ओके,
0: तो लिया जाए पहला प्रश्न आपसे।
2: हाँ।
0: ओके,

0: तो आर्यन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ होती है? पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया कहाँ होती है?
1: पत्तों में।
0: चोर है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ लीव।
0: चलिए तो चलिए आर्यन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर पत्ता लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विद्वान शब्द का सही विलोम क्या होगा? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ज्ञानी।
0: श्योर है?
1: हाँ।
0: चलिए तो लॉक करते हैं आपके प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए ज्ञानी आर्यन जी।
1: हाँ।
0: और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा मूर्ख। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
7: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
7: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029994921 8029994921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
1: जी मैम, मैं मनोज कुमार प्रयागराज से बोल रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं मनोज जी?
1: मैं अच्छा हूँ मैम।
0: जी तो मनोज जी, एक बार बता दीजिए पढ़ाई कहाँ पे किए हैं आप?
1: मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है।
0: अच्छा।
1: इसी साल ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है।
0: तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: ये मम्मी का नाम है दुलारी देवी, राम दुलारी देवी, और पापा का नाम है अनुरुद्ध सिंह।
0: जी तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो मनोज जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए रोहिणी, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम आर्यभट्ट।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी आर्यभट्ट को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम सहारा मरुस्थल।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, चलिए मनोज जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, किस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है? किस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है? ऑप्शन ए न्यूटन का प्रथम नियम, बी न्यूटन का द्वितीय नियम, और सी न्यूटन का तृतीय नियम।
1: मैम न्यूटन का तृतीय नियम।
0: श्योर है?
1: तीसरा। यस मैम।
0: लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए मनोज जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? निम्न में से कौन सा तत्व अक्रिय गैस है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम नाइट्रोजन।
0: क्यों है?
1: मैम 50-50% चांस।
0: 50-50 में है। लॉक कर दो।
1: यस मैम।
0: ओके, तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी नाइट्रोजन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा हीलियम, ना कि नाइट्रोजन। ओके, हेलो ब्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिविजन के कार्यक्रम में, ब्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: सालू कुमारी से।
0: कैसी है सालू जी?
2: हम ठीक है, आप बताइए आप कैसी?
0: हम भी बढ़िया है। तो क्या हो रहा था सालू जी अभी?

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए शेर, बी बाघ, सी हाथी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी बाघ।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दें?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाघ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए जड़, बी पत्ती, सी तना। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी क्या था?
0: ऑप्शन बी पत्ती।
1: ऑप्शन बी।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी पत्ती को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: तो सालू जी, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक जल से ढका है? पृथ्वी का कौन सा भाग सबसे अधिक जल से ढका है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध और सी भूमध्य रेखा क्षेत्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: उत्तरी गोलार्ध।
0: जी क्या बोली आप?
1: उत्तरी गोलार्ध।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: श्योर तो नहीं है लेकिन लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा दक्षिणी गोलार्ध, न कि उत्तरी गोलार्ध। ओके, हेलो फ्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का आधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता

0: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल अंबेडकर चौक हॉस्पिटल रोड गोपालगंज, अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94-21 80029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
3: हेलो नमस्ते
4: मैम।
3: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
4: थैंक यू मैम
3: जी। नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से?
4: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी बमस्तान गोपालगंज से।
3: ठीक, कैसी हैं सलोनी जी?
4: ठीक हूँ, आप बताइए।
3: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या हो रहा था अभी?
4: कुछ नहीं।
3: अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी सलोनी जी?
4: अच्छी चल रही है।
3: और किस क्लास में पढ़ती हैं आप?
4: बीए फाइनल हुई है।
3: बीए फाइनल हो गया है। आगे का क्या प्लान है?
4: आगे प्लान है, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की।
3: चलिए, तो मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
4: मम्मी का नाम है सरिता देवी और पापा जी का नाम है सुंदर लाल।
3: तो लिया जाए पहला प्रश्न आज का आपसे।
4: हाँ जी।

0: तो सुनिधि आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल छोटा है? ऑप्शन ए सारण प्रमंडल, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय श्रोता है अब।
1: ऑप्शन फिर से दीजिएगा।
0: ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर।
1: सारण
0: सारण कोसी भागलपुर।
1: सारण लगाइए।
0: हाँ
1: सारण
0: सारण लगाऊं? श्योर है?
1: नहीं,
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: चलिए तो सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सारण को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भागलपुर। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो,
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: मैं सचिन कुमार बोल रहा हूँ।
0: सचिन कुमार,
2: पचरुखी।
0: सचिन नाम बताया आपने?
2: जी
0: जी, पचरुखी से बात कर रहे हैं, पचरुखी सिवान।
2: जी जी
0: जी, क्या करते हैं सचिन जी?
2: 12वीं क्लास में पढ़ाई करता हूँ।
0: अच्छा, 12वीं क्लास में
2: जी।
0: और आगे क्या करने का प्लान है, सोचा है कुछ आपने?
2: तैयारी करते हैं मैम, गवर्नमेंट जॉब।
0: अच्छा, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
2: बढ़िया चल रही है।
0: चलिए बढ़िया की बात है। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिताजी का नाम दिनेश ठाकुर और मम्मी का नाम उषा देवी।
0: जी, और क्या करते हैं पापा जी आपके?
2: फार्मर हैं।
0: ओके, आप इससे पहले हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: जी जी किया।
0: तो आज के पहले प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी
0: जी।

0: तो सचिन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, बिहार राज्य का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा है? ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: क्या मुझे ऑप्शन एक बार और बोलोगी?
0: ऑप्शन ए सारण, बी कोसी, सी भागलपुर।
1: भागलपुर फिक्स कीजिए। मैं
0: श्योर है
1: जी।
0: ओके, तो चलिए सचिन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन

0: भागलपुर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? बिहार केसरी के नाम से किस महान पुरुष को जानते हैं? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी श्री कृष्ण सिंह और सी कर्पूरी ठाकुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: श्री कृष्ण सिंह।
1: जी।
0: क्यों रहे? लॉक कर दो।
1: जी
0: जी। तो चलिए सचिन जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मोतिहारी, बी बेतिया, सी मुजफ्फरपुर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बेतिया फिक्स कीजिए। मैं
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो चलिए सचिन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बेतिया को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 108 डिग्री है तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? ऑप्शन
1: 72 डिग्री।
0: क्यों रहे?
1: 108 बोली मैम।
0: जी 108 बोले हैं।
1: हाँ।
0: तो लॉक कर दो।
1: जी।
0: तो सचिन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 72 डिग्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, भ्रष्टाचार और भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? भ्रष्टाचार और भारत छोड़ो पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी किरण बेदी और सी अमृत प्रीतम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन सी फिक्स कीजिए।
0: अमृत प्रीतम।
1: जी।
0: चोर है? चलिए, तो चलिए सचिन जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अमृत प्रीतम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा किरण बेदी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल। माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है।

0: माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921, 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
9: हेलो।
10: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यूरिंग जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: जी मैम।
9: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
10: नाम सलोनी कुमारी, बंजारी ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
9: जी, कैसी हैं सलोनी जी?
10: ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
9: मैं भी बढ़िया हूँ। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है सलोनी जी आपकी?
10: BA फाइनल ईयर
9: चल रहा है।
10: हाँ,
9: पढ़ाई कैसे चल रही है आपकी?
10: अच्छी चल रही है।
9: मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: मम्मी का नाम है सविता देवी और पापा जी का नाम है कुंदन लाल सा।
9: ठीक, तो लिया जाए आपसे आज क्या पहला प्रश्न?
10: हाँ लीजिए।
9: ओके,

0: तो सलोनी जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए इंद्रा सागर, ऑप्शन बी गोविंद सागर और ऑप्शन सी नागार्जुन सागर।
1: गोविंद सागर।
0: चोर है?
1: चोर तो नहीं है पर लग रहा यही होगा।
0: लॉक कर दें?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है।
1: हाँ,
0: भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? भाखड़ा बांध के निर्माण से कौन सी झील बनी है? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी हीराकुंड, सी गोविंद सागर। आपका समय होता है? श्योर है?
1: हाँ श्योर हो।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन सी गोविंद सागर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है। संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संसद। आपका समय होता है अब।
1: मैम ऑप्शन बी से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय और सी संसद।
1: सर्वोच्च न्यायालय।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है।
0: लॉक कर दें?
1: लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय को लॉक करते हैं। और आपको बता दी कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947। आपका समय श्रोता है अब।
1: पेन भी लगाइए।
0: 26 नवंबर 1949।
1: हाँ।
0: श्योर है?
1: श्योर तो नहीं है। नहीं,
0: जनवरी 1950 नहीं हो सकता।
1: लगा लीजिए 26 जनवरी 1950।
0: एक बार फिर सोच लीजिए।
1: लगाइए 26 जनवरी 1950।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर था 26 जनवरी 1949, जो आपने पहले बताया था।
1: ठीक है।
0: हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो।
0: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
3: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
3: सालू कुमारी सिरसी टोला से।
2: ठीक, कैसी हैं सालू जी?
3: हम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो कहाँ तक पढ़ाई की है सालू जी आप?
3: अभी 9th में हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ।
2: 9th का चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है आपकी?
3: अच्छा चल रहा है।
2: आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
3: जी UPSC में जाना, सिविल सर्विसेज में जाना।
2: अच्छा, तो तैयारी शुरू कर दी है कि अभी 10th के बाद?
3: 10th के बाद।
2: 10th के बाद, चलिए बढ़िया है। चलो, क्विज कॉन्टेस्ट में इससे पहले कॉल किए हैं आप?
3: हाँ किए हैं, एक बार मैंने दिया था 10 क्वेश्चन का टोटल आंसर, तो उसमें कुछ हुआ ही
2: होगा? जरूर दी है तो
3: पता नहीं।
2: पक्का होगा, ऐसा थोड़ी है सबका एक साल में जब हमारा ये रेडियो रिमझिम का स्थापना दिवस होता है, जब सबको ही रहता है, उस बीच में बुलाया जाता है सभी को, जो पूरे साल में जितने लोग विनर बने होते हैं। आपके बगल में कोई है?
3: नहीं, वो पापा का फोन आ रहा है इसलिए।
2: अच्छा, कोई है तो फिर उन्हें भेज दीजिए या फिर आप कहीं अलग हो जाइए, ठीक है?
3: ठीक है।
2: ओके, तो सालू जी लिया जाए पहला प्रश्न आपसे आज का।
3: हाँ,
2: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
3: मेरी मम्मी का नाम श्रीमती निर्मला देवी, पापा का नाम बलिंद्र कुमार प्रसाद।
2: जी,

0: तो सालू जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है।
1: हाँ बोलिए।
0: कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी और ऑप्शन सी विटामिन के। आपका समय शुरू होता है अब।
1: विटामिन के।
0: श्योर है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दो?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए सालू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विटामिन के को लॉक करते हैं। और आपको बताएं कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा विटामिन सी, ना कि विटामिन के।
1: जी मैम।
0: ओके, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में की बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
6: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
6: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंचिंग के कार्यक्रम में। क्विज कॉन्टेस्ट में
9: गुड्डू कुमार यादव बोल रहा हूँ।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं गुड्डू जी?
9: भाटवा रोड से।
0: ये कहाँ पड़ता है आपका भाटवा रोड?
9: कुचायकोट।
0: कैसे हैं गुड्डू जी आप?
9: ठीक है,
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है गुड्डू जी आपकी?
9: ग्रेजुएशन तक की है।
0: उसके बाद पढ़ाई चल रही है कि छोड़ दिए हैं?
9: नहीं, बीएड कर रहे हैं।
0: अच्छा, बीएड चल रहा है, चलिए बढ़िया है। मम्मी पापा का नाम बता दीजिए आप अपना।
9: जी, पिताजी का नाम उमा शंकर यादव और माता जी का नाम कल्पवती देवी।
0: जी, तो गुड्डू जी, लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
9: हाँ लीजिए।
0: ओके,

0: तो पुत्र जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है, गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? गोविंद सागर झील का संबंध किस बांध से है? ऑप्शन ए है टिहरी बांध, बी है भाखड़ा बांध और सी है सरदार सरोवर बांध। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सरदार सरोवर को ठीक चाहिए।
0: प्योर है?
1: प्योर तो नहीं है लेकिन ठीक चाहिए।
0: ओके, तो चलिए गुड्डू जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा भाखड़ा बांध। जी हेलो, क्यूज कौन? हेलो,
2: हाँ नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी
0: नाम बताइए अपना और कहाँ से?
2: जी मैं विमल कुमारी बोल रही हूँ लाइन बाजार से।
0: जी कैसी हैं विमल जी?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो पढ़ाई करती हैं आप?
2: हाँ पढ़ाई कर लिए है।
0: अच्छा फाइनल है?
2: हाँ अभी फिलहाल बंद है।
0: अच्छा कहाँ तक हुई है पढ़ाई आपकी?
2: ग्रेजुएशन तक।
0: ग्रेजुएशन करके छोड़ दी है?
2: हाँ।
0: तो आज के प्रश्न के लिए तैयार हैं आप?
2: जी मैम।
0: जी तो अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए विमल जी।
2: जी मेरे मम्मी का नाम प्रभावती देवी है और पापा जी का नाम श्री रामा जी प्रसाद है।
0: चलिए तो प्रश्न पहला आपसे।
2: जी मैम।
0: जी तो चलिए विमल जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू है अब।
1: आपका आवाज कट गया मैम।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले।
1: आपका आवाज नहीं सुनाई दिया शुरू में।
0: क्वेश्चन नहीं सुनाई पड़ा
1: जी।
0: क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छब्बीस जनवरी 1950।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी मैम।
0: ओके, तो चलिए विमल जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
2: जी मैम।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार और सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी ऑप्शन बी
0: थार मरुस्थल।
1: मेरा आवाज में थोड़ा फोन कट कट के आ रहा है ना, तो नहीं सुन पा रहे।
0: तो ऑप्शन फिर से बोले।
1: जी।
0: ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, बी है थार मरुस्थल, सी है गोभी मरुस्थल।
1: बी लॉक कर दीजिए।
0: थार मरुस्थल को?
1: जी
0: जी। तो चलिए विमल जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है।
1: ओके मैम।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोक कॉन्टेस्ट में कॉल की।
1: ओके।
3: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
5: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
4: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
6: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
4: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
4: और 9097160602।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ड्यूरिन जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
10: निरंजन कुमार बोल रहे हैं। बताओ से
0: निरंजन की रंजन?
10: निरंजन।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं निरंजन?
10: बतरदे से।
0: बतरदे
10: जी,
0: ये बतरदे किधर पड़ता है? नाम तो सुना हुआ है।
10: डोली प्रखंड पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा,
10: मेरे गांव का नाम अंग्रेजों रखा था बतरदे।
0: अच्छा,
10: तो बतरदे हो गया यहाँ। अच्छा, दिन गुजरता था लोग का।
0: ये बतरदे थोड़ा सीधा हो गया, साधारण हो गया है।
10: हाँ हाँ,
0: कोई भी बोल सकता है। तो कैसे हैं निरंजन जी आप?
10: अपना सुनाइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
10: इंटर तक हुई है।
0: इंटर के बाद जारी है कि खत्म, वहीं से छोड़ दिए हैं?
10: छोड़ दिए हैं।
0: इंटर के बाद छोड़ दिए हैं।
10: 2020 में ही इंटर का एग्जाम।
0: अच्छा,
10: उसके बाद कोरोना आ गया, पैसा भी नहीं था एडमिशन कराने के लिए।
0: उस टाइम तो काफी लोगों का पढ़ाई लॉस हुआ है।
10: टाइम में मैंने ऑनलाइन कराए थे, कॉलेज में भेजा था नेचुरल जलाल, तो उसे पैसा 6,000 रूपया लग रहा था 8 से दुकाने के लिए। 4,000 रूपया लेकर गए थे। नहीं भैया,
0: नाम आने के बाद 8,000 रूपया लग रहा था।
10: 6,000 एडमिशन के लिए।
0: लिस्ट में नाम आने के बाद?
10: हाँ, लिस्ट में नाम आने के बाद।
0: फिर तो ये तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था।
10: हाँ,
0: क्योंकि
10: कॉलेज है
0: हमारे यहाँ, तो जो कॉलेज है यहाँ कमला राय है, उसमें तो इतना नहीं लगता है।
10: इधर उतना नहीं लगता है। उधर भेज दिया था ऑनलाइन।
0: तो आप ऑप्शन में लिए होंगे?
10: उसको लास्ट में डाले थे, 10 ऑप्शन रहता है, 10 कॉलेज का डालना पड़ता था।
0: 10 कॉलेज का नाम होता है।
10: और लास्ट में डाले थे, किसी में डाल दिया।
0: चलिए, जो होना था वो हो गया।
10: उसमें जो मास्टर किधर है बात करना है, प्रिंसिपल साहब, तो सब उल्टा पुल्टा बोल रहा था। ये उन्हें रोज से घुमा सही है, पहने घुमा सही, बाकी इस बार छोड़ दीजिए।
0: अभी क्या करते हैं आप निरंजन जी?
10: अभी तो गांव में आए हुए हैं, बाहर आते हैं सूरत।
0: अच्छा, काम करते हैं।
10: हाँ,
0: तभी घर आए हुए हैं
10: जी।
0: रेडियो रिंजन को कब से सुनते हैं आप?
10: रेडियो रिंजन को तो हम 2009 से ही सुनते हैं।
0: मतलब जब से इसका स्थापना हुआ तभी से?
10: क्या,
0: जब स्थापना हुआ रेडियो रिंजन का तभी से आप सुनते हैं?
10: हाँ हाँ, अभी छोटे से पांच कला से पढ़ रहे थे। रेडियो रिंजन दिन में 2-3 बार बंद हो जाता था।
0: दो बार।
10: हाँ, तो बढ़िया से सुनते थे। जब स्टार्ट होता था भक्ति गाना बजता था।
0: तो हेलो
10: जनरेटर की आवाज सुनाता था। जनरेटर जो चलता था उसका आवाज ही सुनाता था पहले।
0: कभी कभी आता था।
10: हाँ, तो उस टाइम से ही सुन रहे हैं।
0: चलिए बढ़िया है। तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं इससे पहले?
10: हाँ, कॉल तो बहुत बार किए।
0: अच्छा, तो लिए जाए आपसे आज का प्रश्न है। जी, तो निरंजन जी आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: माता जी के नाम श्रीमती जन्मती देवी और पिताजी का श्री सुमन माजी।
0: तो निरंजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? विद्वान शब्द का सही विलोम क्या है? ऑप्शन ए ज्ञानी, बी मूर्ख, सी शिक्षक। आपका समय श्रोता अब।
1: मूर्ख होगा।
0: श्योर है?
1: हाँ श्योर है।
0: लॉक कर दो।
1: जी
0: जी। तो चलिए निरंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मूर्ख को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? ऑप्शन ए
1: विटामिन सी।
0: श्योर है?
1: जी।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: चलिए तो चलिए निरंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर विटामिन सी लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? जी। आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? श्योर है? ओके। तो चलिए निरंजन जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? चौथा प्रश्न आपसे ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, बी थार मरुस्थल, सी गोभी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: थार।
0: क्यों है?
1: जी।
0: लॉक करूं?
1: जी
0: जी।

0: तो चलिए निरंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी थार मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा सहारा
1: मरुस्थल।
0: भारत का है, हम विश्व का पूछे हैं।
1: अच्छा, विश्व का सहारा।
0: कोई नहीं, नेक्स्ट संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है,
0: ठीक है। हेलो, क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर

0: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से?
1: प्रियांशु थारे से
0: जी। क्या करते हैं प्रियांशु?
1: अभी तो स्कूल में है।
0: मतलब स्कूल में किस क्लास की पढ़ाई चल रही है अभी आपकी?
1: सेवेंथ।
0: सेवेंथ, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी?
1: बढ़िया
0: बढ़िया चल रही है। तो प्राइवेट में पढ़ते हैं या सरकारी में?
1: प्राइवेट।
0: प्राइवेट कौन से स्कूल में?
1: क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल।
0: अच्छा अच्छा, और कहाँ से बात कर रहे हैं प्रियांशु, एक बार फिर बताइए।
1: थावे से।
0: थावे से, प्रॉपर थावे या फिर थावे में कोई जगह?
1: थावे ही है, नानी थावे।
0: अच्छा, तो हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में पहली बार कॉल किए हैं आप? चलिए, कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हाँ सुनते हैं।
0: तो तैयार हैं आप आज के हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के लिए?
1: हाँ।
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
1: पापा के नाम श्री केजवाल दुर्गा, मम्मी के नाम श्रीमती दुर्गा देवी।
0: पापा जी क्या करते हैं आपका?
1: बाहर रहते हैं, इलेक्ट्रिशियन है।
0: तो ले आज का पहला प्रश्न आपसे।

0: जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: लाल बहादुर शास्त्री।
0: श्योर है? लॉक कर दें? चलिए तो प्रियांशु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, तो प्रियांशु आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, बी थार मरुस्थल, सी गोबी मरुस्थल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सहारा मरुस्थल। सहारा।
0: श्योर है? लॉक करें? जी। और प्रियांशु जी आप जहाँ हैं वहाँ से हट जाइए, बहुत सारी आवाज आ रही है बगल से।
1: ठीक है
0: जी, तो लॉक करें ना आपका दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर सहारा मरुस्थल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? तो प्रियांशु जी आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पंद्रह अगस्त 1947।
0: श्योर है? लॉक करूं? चलिए तो प्रियांशु जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आप तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था जी। हेलो, क्यू कॉन्टेस्ट में कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है,
0: ओके।
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: रोज का पेट दर्द?
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87 894 18744।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, सुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: ओम नमः शिवाय।
9: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
9: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
9: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
9: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
9: बोलबम हर

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9955-9494-53
2: और 9097-6160-02।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779714861.
11: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमछिम 90.4 FM पे। समय 9:21 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है। ये बातें आप सभी के बीच हर रोज निवेदन पूर्वक बताई जाती है। तो आप लोग जैसे कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आखिल टोला से और गाना सुनना है चेहरा तेरे किताबी किताबी। उदित नारायण जी की आवाज़ में तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि जया ना कीजिए ये उमर जनाब। और इस मैसेज को पहुंचाने वाले कौन है ये तो नहीं बताए हुए हैं, तो आप अपना परिचय दें। फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, मैं कमलेश कुमार विलेज सविया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। कमलेश जी क्या हाल चाल है, बने रहे हमारे साथ। और बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे सफरोज अली जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चेहरा तेरा किताबी किताबी, उदित नारायण जी की आवाज़ में।

मस्त सॉन्ग उदित जी के आवाज़ों में सुन रहे हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे सोशल SMS फरमाइश। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो पुराने गाने की फरमाइश करना है। और एक और बात कि इस सप्ताह में जो भी श्रोतागण आप अपने पसंद के गाने सुन चुके हैं वो दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे, क्योंकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है। तो आज तो थोड़ा सा सब्र कर लेंगे कि एक सप्ताह से जो ट्राई कर रहे हैं, जो जिनकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर पाए हैं, उनकी भी फरमाइश हम पूरी कर पाएँ यदि आप लोगों का सहयोग हो तो। आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुए थे, मैसेज शामिल करेंगे। यहाँ पर आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, हाय सर जी, नमस्कार सर जी, कैसे हैं? मैं प्रीति रैदास, विलेज लकड़ी, दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान, बिहार से, और आज मेरी एक वीक कंप्लीट हो चुकी है। तो आज मुझे सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग ने मेरा सोना सजन घरे आ गया, फ्रॉम द मूवी दिल परदेसी हो गया से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपकी फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय, मैं शिल्पी और मुझे सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे, और आप अपने गाने को चेंज करती हैं तो ही आपकी फरमाइश हम पूरी कर पाएंगे, क्योंकि भोजपुरी गाने के फरमाइश की हैं। और हमें लगता है कि इस समय, और हमें लगता है कि ये गाने रेडियो पर भी हम नहीं सुना सकते हैं। फिलहाल आप गाने को चेंज करती हैं तो ही सुना पाएंगे, आपकी फरमाइश पूरी कर पाएंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं दीपराज। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और बेरवा से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल आपकी सॉन्ग की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ, लिखा गया कि थैंक्स सर, आप सभी, आप भी गाइए ना। तो सभी गाने हमें गाने नहीं आते हैं, और कुछ कुछ गाने हैं जो सहयोग कर लेते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, मेरा नाम है लखन पांडे और मैं सरेवाड़ नंबर 1 से हूँ, और आप गाना बजाएं किशोर कुमार की, और ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो आपकी सॉन्ग तो इस सप्ताह पूरी की है, किया गया है, लेकिन आप यदि जुड़े हुए हैं तो समय अगर हमारे पास बचता है तो पूरा करने की कोशिश भी रहेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं कमलेश जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। और लिखा गया है कि मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल, प्लीज़ सुना दीजिए। तो चलिए आपकी सॉन्ग प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

FM पे इस प्यारे से मुजरा को सुन रहे थे। और सोशल लाइफ में फरमाइश का और यदि आप भी शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। और हम बताएं कि इनकी फरमाइश हम अभी सुन रहे थे और इनकी फरमाइश इस सप्ताह में हमें लगता है कल नहीं परसों ही सुने थे। और इन्होंने गाने की फरमाइश किए थे दिल जले मूवी से, शाम है धुआ धुआ। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें और दूसरों को भी सुनने का मौका दें। कमलेश जी, आपसे स्पेशली कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। और जो लोग भी सप्ताह में एक दिन गाने सुन लेते हैं, उन सभी से भी निवेदन है कि दूसरों को भी सुनने का मौका दें, क्योंकि बहुत कम समय का यह कार्यक्रम बना हुआ है और आप एक दूसरे को मौका देंगे तो ही वो अपने पसंद के गाने सुन पाएंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज़ आईने में देखते हो। मुझे लोग कहते हैं कदमों के धूल। सुपर सॉन्ग सोनू भाई, नमस्कार। और हम भी जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। इस मैसेज को करते हैं दिलीप जी अपने गांव शिहरवा से और आगे कहते हैं कि जीना है तो खुल कर जियो, घुटकर नहीं। ये ज़िंदगी जीने के लिए मिली है, पल पल मरने के लिए नहीं। बिल्कुल। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू सर, अनूप यादव लुधियाना पंजाब से जुड़े हुए। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सोनू भैया, मैं स्वीटी शर्मा वृंदावन से और मुझे सॉन्ग सुनना है दिलबर दिलबर। मैं स्वीटी एक वीक से बहुत दिनों से, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल धड़कता है केहू के प्यार में, ये गाना सुना दीजिए। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे शिल्पी जी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। तो चलिए आपको धन्यवाद है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कमलेश जी कि दूसरों को भी मौका देने का कोशिश करें। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं। यहाँ पर प्रीति रैदास की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है दिल परदेसी हो गया मूवी से, मेरा सोना सजर घर आया। तो चलिए एंजॉय किया जाए आपके गाने के साथ। हम सभी भी हैं आपके साथ रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
3: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
5: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड

0: दाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ MBBS MS ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी,
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एम जी 90.4 एफएम पे सोशल एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज भी पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा सोना सजन घर आया नाइस सॉन्ग, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश से पहुँचा हुआ है शिल्पी। गाने को चेंज करते हुए गाने की बोल बताती है, दिल धड़के लाके हुके प्यार में, पवन सिंह के ही आवाज़ में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, मैं दीपराज और मेरा पहले गाना कैंसिल कर दिए, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हम खुशनुमा कुमार, हमें भी गाना सुनना है, हम शुभम कुमार और हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिए सर। तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनील जी, और इस मैसेज को करते हैं अनूप जी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सर जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, मैं अपनी सॉन्ग एंजॉय कर ली, और चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी की और हम सभी भी इंजॉय किए आपके गाने के साथ। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि तेरा नाम लेने की चाहत हुई है, और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं प्रिंस यादव। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें और आगे बढ़ते हैं, गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी अगली गाने की फरमाइश पवन सिंह की आवाज़ में।

सैटरडे एमजीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और काफ़ी प्यारा शाम आगे मिसेज और आगे दीपराज जी की मिसेज और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश चेंज करते हुए दिया गया है। गाने का बोल देते हैं, मन मूवी से चाह है तुझको चाहूँगा हरदम। तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करेंगे यहाँ पे। आगे कुछ से मैसेजें दिख ले, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और तो बिल्कुल सबकी फरमाइश एक एक करके पूरी कर ही रहे हैं, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा आप लोग सब्र करें। फिलहाल हम गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो M6.4 FM पे सोशल SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने की फरमाइश करते हैं, हमारा प्यार के बदला में बोला का दिले बाड़ू अनूप जी। तो आप भी बने रहे हमारे साथ और गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हमारा भी गाना बजा दीजिए सर। तो बिल्कुल आपकी भी गाने बजाएंगे, और आपसे भी पहले कुछ श्रोतागण मैसेज किए हुए, वो भी तो अपने गाने के लेकर इंतज़ार में लगे हुए हैं। अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे प्ले करते हैं स्वीटी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है दिल भर दिल भर। तो आपके गाने हम प्ले करेंगे। यहाँ पे कुछ मैसेज अभी टाइप हो रहे हैं, यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सुनो भैया, शहाबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़े हुए थे, बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और बने रहे हमारे साथ। आपकी भी फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है, और गाने प्ले करते हैं फिलहाल स्वीटी की, और सुनते हैं इनके पसंद के गाने।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225667 या 97714861164।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें उस फरमाइश का और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं शुभम जी की और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है झूठी है दुनिया झूठे हैं लोग कहते हैं कि हमारा गाना बजा दीजिए तो चलिए आपके भी गाने हम बजाते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमछिम 94.4 FM पे।

0: मारुति स्टूडियो
1: आप सब और एक कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे देखिए तो समय जो है समाप्ति के करीब आ चुके हैं और यहाँ पे आगे गाने की फरमाइश और इस गाने का फरमाइश करती हैं नांदनी और गाने का बोल देती हैं प्रेम रतन धन पायो। कल से मैसेज कर रही है और इनके मैसेज पर हम ध्यान नहीं दे पा रहे थे और जैसे जैसे मैसेज आते जाते हैं तो कुछ मैसेज है जो दब जाते हैं और उसी में से इनका भी मैसेज था। तो चलिए आज आपकी फरमाइश हम पूरी करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आगे मैसेज त्रिपुरवा से सुरेश शाह जी भी पहुँचाए हुए हैं तो आज तो नहीं पूरा कर पा रहे हैं और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और शहाबुद्दीन जी तो आज भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, कल अगले सप्ताह अब पूरी करने की कोशिश रहेगी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारा अभी गाना बजा दीजिए, आज नहीं बज पाएगा क्योंकि समय की समाप्ति हो चुकी है और अंतिम गाने प्ले करने जा रहे हैं और इसी गाने के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। और जो कुछ श्रोतागण छूट जा रहे हैं उनकी फरमाइश अब अगले सप्ताह पूरा करने की कोशिश रहेगा और जो लोग इस सप्ताह गाने सुन चुके हैं तो एक ही दिन यानी मंडे के दिन सब कोई इकट्ठा ना होंगे, दूसरों को भी मौका देंगे जो आज छूट गए हैं उनको भी अपने गाने सुनने का मौका देंगे तो वो भी अपने गाने सुन पाएंगे। ऐसी थोड़ी सी अपने में सब्र की जिज्ञासा को जागरूक करना है और दूसरों को भी मौका देना है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं अंतिम गाने प्ले करते हुए, काफ़ी प्यारा सॉन्ग है प्रेम रतन धन पायो, और सुनते हैं एंजॉय करते हैं और मिलते हैं फिर अगले सप्ताह। नमस्कार।

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे आईसीयू इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: टॉप भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो चुका है योर वॉइस योर चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ आप सभी के बीच। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782881। और कॉल के लिए नंबर है 72776696। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और

हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप के जरिए मैसेज पहुंचे हुए हैं। आज तो सोनी जी नहीं हैं, लेकिन मैं भारती आज आप सभी के बीच हाजिर हूं। मेरे से कुछ गलती या थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। और मैं पहली बार आप सभी के बीच जुड़ रही हूँ, तो आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम पता व्हाट्सएप मैसेज में ज़रूर लिखें, ताकि मैं भी आप सभी को जान सकूँ आप कौन हैं और कहाँ से हैं। तो बिना देरी किए चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं सभी के मैसेजेस।

यहाँ दीपक जी फ्रॉम दुबई से जुड़े हुए हैं और मुस्तफ़ा जी सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं और हाय भारती मैम, मस्त हैं मैं कहाँ यहाँ मिथुन शर्मा उत्तर टोला महादास से जुड़े हैं, यहाँ राजेश जी लिखते हैं गुड आफ्टरनून मैडम जी, आपको भी गुड आफ्टरनून।

यहाँ कैफ मोबाइल गोंडा यूपी गाना सुनना है इनको। भारती जी आप मेरा मैसेज शामिल करिए और आप ही अपने पसंद का गाना प्ले कर दीजिए, तो शायद आपका कल गाना बजा हुआ था तो अगली शुक्रवार को बजेगा फिर से आपका गाना।

और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं जय माता दी मैडम जी। जी आपको भी जय माता जी। मैं विनय कुमार कश्मीर से, मुझे एक सॉन्ग सुनना दीजिए, मिल जाते हैं जो प्यार में मर के भी बिछड़ते नहीं और दिखते हैं और लिखते हैं शिव सागर दीवाना अमित बाबा कमलेश कुमार। आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ, मुझे आज शामिल करिएगा और सॉन्ग ज़रूर चलाइएगा। जय माता दी, जय माता दी मैडम जी।

यहाँ पहला गाना मैं विनय कुमार जी का प्ले करने जा रही हूँ। गाने के बोल हैं, मिल जाते हैं जो प्यार में, मर के भी बिछड़ते नहीं। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत विनय जी के साथ।

तो हमने विनय जी के साथ सुना ये खूबसूरत सा गीत, और हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जई छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से, और इन्हें भी गाना सुनना है। और गाने के बोल हैं, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो चलिए सुनते हैं इनका गीत और इन्जॉय करते हैं।

0: तो अमोद जी की तरफ से हम लोगों ने सुना ये खूबसूरत सा गीत, आंख है भरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर

0: 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो हमारे पास अभी बहुत सारे मैसेजेस पहुंचे हुए हैं। लिख रही हैं, हेलो मैडम जी, नमस्कार, कैसी हैं? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माई न्यू आरजे सिस्टर। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद। और ये मैसेज लिख रही हैं प्रीति जी,

नमस्कार प्रणाम बा राउरा के हमहूँ आ गई बानी हमरा हाजिरी लगा दी तो रोवा लोगन के कहे के चाहत नहीं कि हमरा तो रोवा लोगन के नाम नहीं है मालूम तो अपन नाम जरूर मेंशन करी लो ताकि हम आपके पहचान सकी।

हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं राधे राधे सोनी जी, मैं देवराज कुमार रेशम नगर से आपके योर वॉइस योर चॉइस के साथ प्रोग्राम में जुड़ गया हूँ, कृपया मेरा सॉन्ग चला दीजिए। तो बिल्कुल जी, आपका भी सॉन्ग चलाया जाएगा। और इनका वॉइस मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास,

0: तो चलिए सुनते हैं इनकी भेजी हुई वॉइस।
1: आपको और रेडियो रिमझिम के सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं भी रेडियो रिमझिम के प्रोग्राम में एक गाने की फरमाइश लेके आया हूँ। गाने का बोल इस प्रकार है। मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ, लाजमी

0: सुर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो।
1: आज मुझे ये गाना सुना दीजिएगा, साथ में रेडियो रिमझिम के तमाम दोस्त भी ये गाना को सुनेंगे और बताएंगे कि सॉन्ग कैसा लगा। प्लीज मैम गाना चला दीजिएगा।
2: तो बिल्कुल इनका ये सॉन्ग तो चलिए सुनते हैं देवराज जी के साथ ये सुंदर सा गीत।

लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। मुझे भी एक सॉन्ग सुना दीजिए खेसारी लाल की आवाज़ में, हरदी लागल। तो जी बिल्कुल आपका गाना प्ले करेंगे। अभी थोड़ा मुझे मैसेजेस, एक साथ सारे मैसेजेस पढ़ने में परेशानी हो रही है, तो इसके लिए आप सबसे सॉरी है। मैं सभी के गाने एक एक करके सुनाऊंगी, तो थोड़ा मेरा साथ दीजिएगा। और ये सॉन्ग साधु राय जी के तरफ से है, खेसारी लाल की आवाज़ में, हरदी लागल जान के। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो। अरे तो इतना घबराई का है,
0: हमारा जिंदगी और मौत के सवाल बा, प्लीज जल्दी आ जाना।
1: ठीक बा, आओ।

0: हमारे साथ ये खूबसूरत सा गीत। तो मिलते हैं फिर से आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक रखिए।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन। न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।

तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो हमारे पास अभी बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, तो मैं सारे मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकती,

इंडी जिला छपरा बिहार है, अभी कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। उनकी फरमाइश है, जान मारे लहंगा ई लखनऊआ, खेसारी लाल यादव जी का है। तो चलिए सुनते हैं इनकी गाने की फरमाइश।

बहुत खूबसूरत सा गीत हम लोगों ने सुना खेसारी लाल की आवाज़ में, जान मारे लहंगाई लखनऊ हुआ। तो पढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, और इनका नाम है अजय और उत्तर प्रदेश से हैं, और इनकी तरफ से गाने की फरमाइश आई हुई है। लिख रहे हैं मुझे आज गाना सुनना है कुर्बानी मूवी का, दीवानों से पूछो मोहब्बत क्या है। तो चलिए प्ले करते हैं इनका सॉन्ग और सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

अभी हम लोगों ने सुना एक खूबसूरत सा गीत, दीवानों से पूछो सॉन्ग, तो काफ़ी खूबसूरत गाना था। अभी हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है। हेलो, क्या हाल है मैम? सब बढ़िया जी, सब बढ़िया। गाना सुनना है धमाल 4 का।

गाने के बोल है चटनी कैसे बनी, और जिन्होंने गाने की फरमाइश की है उनका नाम है राजू और विलेज लकड़ी दरगाह, और लिख रहे हैं मेरा भी गाना बजा दीजिए। तो बिल्कुल आपका गाना प्ले करने जा रहे हैं, और सुनते रहिए ये खूबसूरत सा गीत।

रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर एमजी गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात यह है

0: तो आप लोगों ने सुना हमारे साथ धमाल फूल का ये खूबसूरत सा गीत चटनी कैसे बनी। तो मिलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक रखिए अपना ख्याल।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो हमारे पास अभी बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, तो आइए पढ़ते हैं और सुनाते हैं इनके गाने को। मैं भी जुड़ गया हूँ शो में, नमस्कार बालाघाट से एमपीसी राजकुमार राम, स्लोक राइस मिल इंडस्ट्री से। थोड़ा मेरा नाम बोल दीजिए।

और लिख रहे हैं आज मेरा भी गाना बजा दीजिएगा मैडम जी। तो बिल्कुल अभी आपके गाने को बजाने जा रहे हैं। गाने के बोल हैं चार महीनवा जाड़े की दिनवा, तो बिल्कुल चलिए सुनते हैं आपकी गाने की फरमाइश।

0: सुना एक खूबसूरत सा गीत, चार महीना जाड़ा के दिन हुआ, तो गाना बहुत ही अच्छा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है वॉइस के माध्यम से, लिखते हैं, हेलो नमस्कार, आपको भी मेरा नमस्कार। मैंने लिख रहे हैं, मेरा नाम कृष्णा पासवान है सऊदी अरबिया से, और इन्हें भी एक गाना सुनना है, तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस।
1: जी मैडम नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार पासवान बोल रहा हूँ, अभी मैं सऊदी अरब में हूँ, मुझे एक गाना सुनना है, वो लड़की बहुत याद आती है, प्लीज़ एक गाना सुना दीजिए।

जी ने यहाँ एक गाने की फरमाइश की है, वो लड़की बहुत याद आती है और ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए सुनते हैं कृष्णा जी के साथ इनकी पसंद के ये गीत।

0: अभी टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं आपसे फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
5: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
4: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
5: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 8570-32042 पे।
13: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
14: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
13: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

लैला मजनू का सॉन्ग सुनना है। गाने के बोल हैं लिखकर तेरा नाम, तो ये काफ़ी खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो मुकेश जी की तरफ से चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग।

मनीष पांडे जी गोपालगंज से हैं। ऐसे ही लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, मस्त शो चल रहा है। जी, कोशिश तो कर ही रही हूँ। गाना बजा सकती हैं क्या भारती जी? जी बिल्कुल गाना बजा सकती हूँ, और इनके तरफ से गाने के बोल हैं, दिल है कि मानता नहीं, बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए सुनते हैं मनीष पांडे जी की तरफ से ये खूबसूरत सा गीत।

हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है मनी शर्मा जी का गोरखपुर से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, क्या हालचाल भारती जी। तो मेरा भी हालचाल ठीक है,

मैं निजामुद्दीन सऊदी अरबिया से। भारती जी आपका प्रोग्राम चल रहा है, मिलजुल कर ठीक ठाक है, मुश्किल नहीं है, कोई काम करते करते सक्सेसफुल होता है। सोनी जी भी पहले, दिव्या जी भी थी, सोनी जी एक नए आई थी आपकी तरह, वो भी बहुत घबरा कर प्रोग्राम चलाती थी। मुश्किल नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, घबराइए मत। और यह गाना जो भी भाई लैला मजनू का सुनाए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। निजामुद्दीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: एक खूबसूरत सगे दिल है कि मानता नहीं। तो अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
3: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
2: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
4: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
2: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
4: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
2: और 90971602।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है मुस्तफ़ा सऊदी से, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून जी, आपको भी बहुत बहुत गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनकी तरफ से एक गाने की लिंक आई हुई है जो लाडला मूवी का सॉन्ग है, तो चलिए प्ले करते हैं इनका सॉन्ग और सुनते हैं इनके गाने।

यहाँ सन्यासी रंजन जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, जो लिख रहे हैं, छोटे बच्चे के ताज़ा उगते हुए दांत गन्ने की मशीन जैसी है, जिसमें आपकी उंगली गई तो समझो आपकी चीख निकलेगी, आपकी चीख निकलनी तय है, यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी हाल मेरा वैसे ही है।

बहुत ही खूबसूरत था। तो चलिए इनके गाने के बाद बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला मैसेज। तो अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा हुआ है मिथुन शर्मा उत्तर टोला महादा से। इनको भी गाना सुनना है और इनका भी गाने के लिंक पहुंचे हुए हैं और गाने के बोल हैं अकेली ना बाजार जाया करूं नज़र लग जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। तो चलिए मिथुन शर्मा की तरफ से सुनते हैं ये गाने को और इन्जॉय करते हैं।

हमारे पास एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, कैसी हैं? तो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनीर आलम जी, विलेज विनोद मटियानिया गोपालगंज से, इनको भी एक गाना सुनना है। तो जी बिल्कुल आपको गाना सुनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी तब तक एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को सबके साथ।

और यहाँ सनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं। एक बार मेरा भी मैसेज पढ़ लीजिए प्लीज़।

0: तो हम लोगों ने सुना ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी। तो मिलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
8: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
8: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, गोपालगंज।
8: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
8: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
8: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
8: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
8: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास, गोपालगंज। उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
6: बोलबम, हर

तो छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है

विनोद मटियानी से गोपालगंज से हैं, जो गाना सुनना चाहते हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की है इन्होंने। गाने के बोल हैं मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, सदाक मूवी का। तो चलिए प्ले करते हैं इनके गाने को और एंजॉय करते हैं आप सभी के साथ।

हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है मुन्ना मुंबई से, जो लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, कैसी हैं। तो

सुंदर था। तुम्हारी हर बात में शहद और लहजा बड़ा मुकम्मल था। लगा कि मिल गया है भगवान, अब और क्या पाना है। तुम्हारी महफिल में ही बस अब मेरा ठिकाना था। तब नजरों में तुम कोहिनूर से कम न थे। हमारी हर दुआ में बस तुम ही तुम शामिल थे। तब घंटों की भी बातें दो पल की लगती थी। तुम्हारी बोरियत भरी बातें भी गजल सी लगती थी। मगर वक्त गुजरता तो परत दर परत नकाब गिरे। जो आसमान पर थे वो जमीन के भी नीचे गिरे। अब वही चेहरा जो कभी चांद सा लगता था आज मैं बेमतलब की बातों का ढेर सा लगता है। वही इंसान जो कभी खास की फेरिस्त में था आज फुर्सत के वक्त में भी खास की कीमत में है। ये तलब का खेल है दोस्त, जब तक प्यास रहती है तभी तक सामने वाले की हस्ती दिल के पास रहती है। जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत शायरी थी। तो चलिए मैं प्ले करती हूँ आप सभी के लिए एक सॉन्ग, कितना प्यारा ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। तो सुनिए और बताइए कैसा है, कैसा लगा आप सभी को।

0: यहाँ दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, जो लिख रहे हैं न्यू आरजे गुड जॉब कॉन्ग्रेचुलेशन। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद।
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
11: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
12: In second T20 International in Manchester this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलिमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
5: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
7: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार।

0: बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62 112 पे।
10: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार सुझाव शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852784088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
13: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया सोसाइटी का पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
12: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक

0: करते हैं।
1: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता।
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
1: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 90971660।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में?
2: क्यों, क्या हुआ है?
1: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
2: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
1: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
2: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड गोपालगंज में।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
6: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
7: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
8: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
9: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
7: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
6: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
7: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज। प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
9: कॉल करे 87-894-18-744।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
1: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
0: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहाँ पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
1: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।

0: अल्ट्रासाउंड, थोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
2: भरोसे वाले से लेंगे,
1: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
2: और कीमत भी।
1: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
3: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
4: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
5: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
5: आज ही आए एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
5: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
13: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
14: रेडियो रिमझिम,
13: सुनो दिल से।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम।
8: सुनो दिल से।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 919-666-9973।
5: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
8: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939-35923।
9: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम,
7: सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
4: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
3: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
4: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रेमजम।
7: सुनो दिल।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है

0: 98527 88291 या 95238 74088 पर आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलतापूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
2: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंताएं और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
1: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलतापूर्वक करते हैं।
3: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
1: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
3: जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
1: और 90971602।
4: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम
4: सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
8: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
9: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
10: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त RJ भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बज चुके हैं और बिल्कुल समय के साथ हाजिर हो चुकी हूँ आप सभी के बीच आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो माई चॉइस के साथ। यदि आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने फरमाइश सुन सकते हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश। हेलो
11: हेलो
10: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
11: जी नमस्ते।
10: नमस्ते,
11: अनिल बात कर रहा हूँ छोटू से।
10: जी क्या हाल चाल है आपका?
11: बस बढ़िया, अपना बताइए।
10: हमारा भी ठीक है।
11: चलिए ठीक का ही काम है, सभी लोग ठीक रहे, मस्त रहे। और आज गाना सुनना है।
10: बता दीजिए।
11: यार बदल ना जाना मौसम की तरह।
10: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
11: हाँ, गर्मी महाराज सबसे पहले, ये तो बदल ही नहीं रहे हैं।
10: अच्छा,
11: इनको तो बदल जाना चाहिए, इतना पब्लिक परेशान है गर्मी से। लेकिन ये है कि जीत पे अड़े हुए हैं।
10: जी क्या ही कीजिएगा, ये तो कभी धूप कभी छांव ऐसे हो रहा है अभी फिलहाल।
11: वो तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है इससे, नहीं तो मतलब रेडियो को तो बहुत मतलब बारीकी से हम सुनते हैं, अब लग रहा है और बारीकी से सुनना पड़ेगा। ठीक, फरमाइश मिस ना हो जाए।
10: नहीं मिस नहीं होगा।
11: ठीक है,
10: और सब बढ़िया है ना?
11: हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है।
10: जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM।
11: जी

0: हेलो नमस्ते।
1: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: बाल भी सुंदर तो।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, अपन बताइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: इधर तो बदरी बहुत ज्यादा उखड़ रहा है।
1: बदरी केवल हो रहा है, बारिश हो जाए तो और अच्छा है।
0: नहीं, बारिश तो अभी नहीं हो रहा है। भगवान बड़ी फुर्सत से बनाए ना पवन सिंह के
1: गाना।
0: जी जी,
1: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
0: अमन है, आशीष है, राहुल आदित्य, मोहन अनुराग।
1: अच्छा जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो।
10: हाँ जी, नमस्कार मैम।
9: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो एमजी 91.4 FM में।
10: हाँ जी जी, नमस्कार, मैं जिला बड़ा गाँव, जिला गुना से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ मैम।
9: क्या हाल चाल है आपका?
10: मेरा अच्छा है, आप कैसे हो?
9: हम भी अच्छे हैं।
10: जी मैम, और आप रेडियो सुनते रहते हैं?
9: तो बढ़िया है
10: जी मैम।
9: और सब ठीक है ना?
10: वो सब ठीक है, और खेती बाड़ी का बेटा है हमारा।
9: अच्छा
10: जी,
9: तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है?
10: आज मुझे मोहरा लमका जी सुनना चाहता हूँ मैम।
9: और गाना कौन कौन सा है?
10: रिवर का पानी।
9: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
10: जी जी, गोपाल ओझा जी, गोपाल ओझा है, गजरा सिंह लोधी है, नरेश प्रजापति जी है, हमारी साहू है, हमारी भील है।
9: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: जी मैम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम जिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार,
0: मैं ललन पासवान बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया जी, आप अपना सुनाइए। हमें गाना सुनना था मैडम।
1: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: ये दरभंगा रहमान मालिन का तेरा तुम्हें गाना सुनना था, प्याजा तेरी याद आई।
1: पीछे से कुछ आवाज आ रहा है,
0: मशीन चल रहा है, काम कर रहे हैं जी।

0: अरे एक बार और बोल दीजिए, सुनाई नहीं दिया हमें।
1: करण का गाना सुना मैडम,
0: गाने के बोल
1: आजा तेरी याद आई।
0: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सबसे पहले आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जितना भी हमारा छोटा भाई हूँ रेडियो सुनाना सभी सुनाना चाहता हूँ और मुझसे सुनना चाहता हूँ।
0: ओके ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: ओके मैडम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
6: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
7: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
9: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
9: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
9: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
9: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
10: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो, हेलो,
13: अस्सलाम वालेकुम।
12: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
13: हाँ, कही खैरियत? खैरियत कही, ठीक बानी नो?
12: हाँ हाँ, हम ठीक बानी। रोवा कैसन बानी? रोवा ठीक बानी।
13: आप सुतल बानी?
12: अच्छा, तल खाना खा ले बानी?
13: हाँ, खाना खा ले। बड़ी देर से लगाओ था फोन।

0: पूरा देश है, पूरा दुनिया फैल गए बा करीम जी मौका पूछे के बा। हाँ हाँ हमारे समय तार दोसर हो गए। हाँ करीम जी में फूल करता रहो, तारा नाम से गाना सुना था चाली
1: दोस्त लोग सुने के मिला तरह नाम से गाना और
0: गाना का स्वर हम बड़ा हासिल कर स्कूलों में रहने तो गाना गा
1: तब
0: तो तबियत खराब हो गई, गोड़ टूट गए, बेकार हो गए
1: ना तो वो ओंगनिया मैंने चले नहीं चलत फिरत रहे ठीक रही
0: चलत कहने जाता नहीं कहा हो गए बा छोड़िए जो पड़ल बा
1: नू
0: हमारे का रिएक्शन करता।
1: अच्छा
0: और इन्फेक्शन हो गए बा पूरा गुड़वा पाक जाता ठीक होता पाक जाता पेड़ पाकड़ वाला चिराइल बा इलाज भइल बा आग मारता तो रात से नींद निकल
1: तो छड़िया में कोनो खराबी बा का
0: छड़िया हमार दे बर्दाश्त नहीं करो।
1: अच्छा
0: तो निकाले वाला बात होता और डॉक्टर को जी एक महीने में निकाल दे अब जौन हो के जौन हो
1: ना सब ठीक हुई बढ़िया से दिखा ले।
0: हाँ दिखाओ ले बानी कम से कम 1,00,000 रुपया लग गए ठीक हुआ
1: तो फिर गाना लेकर सुना था सबके साथ रेडियो
0: रेडियो बाजो था
1: चले ठीक
0: बात
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है
0: आपकी आवाज़ है। हेलो,
1: हाँ जी बोलिए।
0: जी नमस्कार, मैं अजय पासवान बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी नमस्कार।
0: गाना सुनना था कला फिल्म का, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम,
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है।
0: जी हेलो, आपकी आवाज़ कट रहा है।
1: हेलो
0: जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: पूछ रहे हैं सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है।
0: जी, रेडियो सुनने वाले सभी को।
1: और सब बढ़िया है ना?
0: जी बढ़िया।
1: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
0: जी
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य एसपी त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज जैसे
1: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, साइटिका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
0: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य एसपी त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
2: वैद्य एसपी त्यागी जी से मिलने का पता
0: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 99554943
0: और 9097160602।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करे 87894-18744।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
10: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
10: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
15: Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Jab phone bhi hindi bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
16: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं खटिया थाना जिला बोल रहा हूँ। पप्पू कुमार ठाकुर है और बताइए, भारती जी बोल रहे हैं?
0: जी भारती नहीं बोल रहे हैं।
1: तो ये क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बस आपसे बातें हो रही
1: हैं। हो तो है, और 10 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है, लगता है कि उनका आखिरी कॉल हमारा ही है।
0: नहीं नहीं अभी है टाइम।
1: बोला
0: जी बता दीजिए।
1: शोर मचा है, शोर फिल्म लगाना है, लगा के मैं

नहीं कहेंगे क्योंकि जब भारत चलाएंगी तो सुनेगी, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूंगा और रेडी बेटा रीड करने वाले हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: गाना सुनना था
0: जी। गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: संतोष यादव, घर धर्मपाशा, वार्ड 1 नंबर पे।
0: ओके, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है मैम।
0: अब क्या हो रहा है?
1: ये तो मैं घर नहीं हूँ, बाहर में हूँ, उड़ीसा में गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी खड़ा है तो ये आज टाइम में आएगी तो एक सवा घंटा से मिला रहा था, बैठे बैठे तो लग गया अभी हाल चाल तो। माइटी कर लेता हूँ, नीमी रोता हूँ गाड़ी में, हमेशा बजाते रहता हूँ रिमझिम द्वारा।
0: अच्छी बात है, तो फिर बता दीजिए कौन सी गाना सुनना को।
1: तो विनय तिवारी का कोई सैड सॉन्ग चला दीजिएगा।
0: गाना एक बार फिर से बता दीजिए।
1: कोई भी सैड सॉन्ग विनय तिवारी का बजा दीजिएगा।
0: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ मैडम, पहले आपको और विनय रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सभी को, और कुछ दोस्त लोग हैं जो राजेश है, गोपाल है, विनय है, ये सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
0: ओके, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0096-575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: Now pick your phone up.
13: Hello? Jab phone din de bajte hai to kehte hai hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: जी नमस्ते मैम।
15: नमस्ते।
16: कौन, सोनी जी की भारती जी?
15: जी मैं सोनी और भारती नहीं बोल रही हूँ, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
16: मनोरमा
15: जी, अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
16: विकास कुमार, हिमतापुर।
15: अच्छा जी, क्या हाल चाल है आपका?
16: बढ़िया है जी। और बताइए, खाना वाना हो गया मैडम?
15: जी अभी तो नहीं हुआ है, आपका हो गया?
16: हम लोग खा करके बस 15 मिनट और आराम करेंगे, बस आधा घंटा का लंच होता है।
15: अच्छा, वैसे करते क्या है आप?
16: अभी तो दिल्ली में है ना, हम लोग कंपनी में अपने काम करते हैं ना।
15: अच्छा अच्छा, बढ़िया। तो बताइए कौन सी गाना सुनना है आपको?
16: गाना हमको सुनना है वो नाकाबंदी वाला, नाकाबंदी वाला नहीं गाना है
15: जी,
16: वही गाना सुनना है, हिंदी गाना है।
15: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
16: सबसे पहले आपको डेडिकेट है
15: जी,
16: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं उनको, जितने मेरे कंपनी में दोस्त है उन लोग का सुनाने चाहते हैं।
15: ओके, तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
16: जी नमस्ते।
15: नमस्ते।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.4 FM में।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते
1: बोलिए। संतोष महतो बोलते हैं
0: जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है, अपना सुनाइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया। क्या हो रहा है?
1: काम हो रहा है, यहाँ तो बहुत धूप है, गर्मी है।
0: धूप तो बहुत है। अच्छा अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: संतोष महतो दिघवा दिघौली बैकुलपुर से।
0: जी
1: गाना सुनवा दीजिए नदिया के पार वाला।
0: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेटेड भी है?
1: गाना सबसे सुनवाने को बाद में हम अपना पन्ना समाज बिजली महतो परमात्मा संजय को रेडियो से जितने लोग जुड़े हैं उससे।
0: ओके चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करें 87-894-18744।
4: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। शाखा राजापुर बाजार, गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
5: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
4: तो देर मत कीजिए,
5: सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा, गोपालगंज। कॉल अस 9939721308।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939-35923।
8: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
9: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
8: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
9: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
10: Pick it up, pick it up.
11: Hello.
10: Now pick your phone up.
11: Hello.
12: Jab phone ring karte hai to kehte hai hello.
13: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
14: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: गाना सुनना था।
0: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए और कहाँ से।
1: संतोष यादव, घर धर्मपरसा, वार्ड 1 नंबर पे।
0: ओके, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है मैम।
0: अब क्या हो रहा है?
1: ये तो मैं घर नहीं हूँ, बाहर में हूँ, उड़ीसा में गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी खड़ा है तो ये आज टाइम में आया की तो एक सवा घंटा से मिला रहा था, बैठे बैठे तो लग गया अभी हाल चाल। तो माइटी कर लेता हूँ, नीमी तो रोता हूँ गाड़ी में, हमेशा बजाते रहता हूँ रिंकी मैं द्वारा।
0: अच्छी बात है, तो फिर बता दीजिए कौन सी गाना सुनना आपको।
1: तो विनय तिवारी का कोई सैड सॉन्ग चला दीजिएगा।
0: गाना एक बार फिर से बता दीजिए।
1: कोई भी सैड सॉन्ग विनय तिवारी का बजा दीजिएगा।
0: ओके, और ये गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: हाँ मैडम, पहले आपको और विनय रेडियो रिंजिंग सुनने वाले हैं सभी को, और कुछ दोस्त लोग हैं जो राजेश है, गोपाल है, विनय है, ये सब दोस्तों के साथ सुनेंगे।
0: ओके तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिंग 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
1: भारती जी को दिल से धन्यवाद है। और तो सुनाइए, कैसे हैं
0: जी? बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, बढ़ा पूर्वी चंपारण से।
0: क्या हाल चाल है?
1: जी जी बहुत अच्छा है। अपना सुनाइए, घर परिवार में और रेडियो रिंकी पूरा परिवार कैसे है आप लोग?
0: बढ़िया है।
1: और मौसम कैसा है उधर?
0: मौसम तो थोड़ा धूप हो रहा है, थोड़ा छांव हो रहा है
1: जी। वैसा ही मौसम इधर है, कभी धूप कभी छांव जी।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी फिल्म का नाम है और गाने का, इसी फिल्म का कोई भी गाना बजा दीजिएगा। गाने का मुखड़ा याद था लेकिन अभी भूल गए।
0: कोई बात नहीं है, और ये गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं
1: जी। सबसे पहले भारती जी आपको सुनाना चाहता हूँ, और दोस्त हो गए संजय साजी, दीपक कुमार जाफी, कंसराज जादू जी, अंचल कुमार जी, पारस कुशवाहा जी, नगीना प्रसाद कुशवाहा जी, धनलाल प्रसाद कुशवाहा जी, राजा बाबू, उसकी खास अभय कुमार, सुदीप कुमार, अजय कुमार, आयुष कुमार, उत्कर्ष कुमार, आधार कुमार, बहुलू प्रसाद कुशवाहा जी, रविंदर प्रसाद कुशवाहा जी, और गोपालगंज जिले के संतरा कुशवाहा जी, काजल जी, गुड़िया जी, नेहा जी, मुस्कान जी, उदिता जी, सुविता जी, सूर्य मोहन जी, नवीन सिंह जी, जितेंद्र जखमी जी, दिलीप राम जी, राम कुमार पांडे जी, और अभी भारती जी की प्रस्तुति कार्यक्रम सुंदर स्तर भी श्रोता बंधु को सुनाना चाहता हूँ।
0: तो चलिए गाना प्ले करता है, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
1: धन्यवाद।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
5: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
5: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस सिर्फ 86,168 रुपए में, HF डिलक्स सिर्फ 75,405 रुपए में, ग्लैमर एक्स सिर्फ 97,456 रुपए में, एक्सट्रीम 125R सिर्फ 110,881 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरों के सफल इलाज के लिए मिले हैं
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
12: Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.

0: ये कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सोना के कदर सुना ये वाला जो गाना निकला है ना,
0: कौन सा सॉन्ग?
1: सोना के कदर।
0: सोना की कदर?
1: हाँ
0: अच्छा, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: मैम आपको और अपने पूरे परिवार को।
0: ओके, तो और सब सब तब तो ठीक है ना?
1: हाँ सब ठीक है, अपना बताइए।
0: हमारा भी ठीक है। तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: ठीक ना कहला।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजन 90.4 एफएम में।
2: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
2: जी मुझे गाना सुनना है मैम।
1: कौन सा गाना सुनिएगा?
2: ये गाना दिल तेरा प्यार ये गाना सुनना है। मैं बुला तेरा प्यार दिल में यही।
1: अब्लाम हुसैन बोल रहे हैं ना?
2: जी मैम।
1: अच्छा, और गाना किसको डेडिकेट भी है?
2: सबसे पहले आपको भाई।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजान 90.4 FM।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67666।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9852374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 97644।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
11: नमस्कार भारती जी।
10: नमस्कार। मेरा ठीक है, आप अपना बताइए। ठीक है जी। क्यों,
11: खाना पीना हुआ कि नहीं?
10: हाँ, मेरा खाना पीना हो गया। आपका हो गया? तो अपना नाम बता दीजिएगा।
11: नाम मेरा दुर्गेश कुमार परमार, जिंदा से बोल रहे हैं। जिंदा
10: गोपाल, क्योंकि नाम रहता है तो अच्छा लगता है।
11: मेरा खाना मेरे पड़ता है। प्रयास करते करता है तो लग रहा था कि नहीं लगेगा कॉल, में फिर बहुत रहा था लग गया।
10: अच्छा, चलिए कोई
11: बात होती है। नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा।
10: कौन सा गाना सुनना है बता दीजिए।
11: गाना सुनना है अगर मेरे हाथ जाते कदमों में तेरे।
10: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
11: और मैं रेडियो रंजन सुनने वाला हूँ। और आप समझ दो क्या रंजन सुनने वाला है।
10: ओके, तो फिर चलिए गाना प्ले कर रहे हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं?
0: हम सब भी ठीक हैं।
1: मैं बजरंगी कुमार बोल रहा हूँ।
0: जी
1: बजरंगी बोल रहा हूँ,
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आवारा पन का सॉन्ग सुनना है।
0: गाने का बोल बोल दीजिए।
1: आवारा पन का जो रिलीज नहीं हुआ है तो गाना बच जाएगा ना?
0: गाना बच जाएगा।
1: उसी फिल्म का कोई भी गाना सुना, हम लोग रहते हैं बोल रहे हैं
0: तो उसमें का कोई भी सॉन्ग। ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है? तो चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। गाना प्ले कर रहे हैं।
1: आज गाना बज जाएगा ना? आज
0: नहीं, कल बजेगा।
1: कल बजेगा?
0: हाँ हाँ, इसीलिए आपका कल बजेगा। ओके।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
3: श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं, समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
12: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
13: आज की हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं सस्पेंस।
14: हेलो, कौन? सुनो साहब, बोलो साहब, हाँ अब बुलाता हूँ, बोलो साहब,
15: बॉम्बे से ट्रंकर है, सुना साहब आपसे बात करना चाहते हैं।
16: आते हैं, आते हैं,
14: आइए,
16: करना चाहते हैं।
14: हेलो,
1: अत्याचार है आप वाले सिन्हा साहब। हाँ हाँ, मैं बेबस सिकंदरपुरी बोल रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ, आप ही के स्क्रीन प्ले पर काम चल रहा है। जी हाँ जी हाँ, नीचे अभी आप जरा आपका जो आइडिया है ना उसको विजुलाइज कर रहा हूँ। क्या फरमा, 15 दिन हो गए? अजी साहब, 15 दिन में तो फिल्म का टाइटल भी नहीं लिखा जाता। आप तो स्क्रीन प्ले की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अभी 15 दिन और लगेंगे। आप आना चाहते हैं? हाँ तो आ जाइए आ जाइए, यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा है। अच्छा जी है, खुदा हाफिज।
14: क्या कह रहे थे सिरे साहब?
1: क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि स्क्रीन प्ले जल्दी दे दो, वरना हीरोइन के डेट मिलने मुश्किल हो जाएगी। अरे वैसे तो बात ठीक है, 15 दिन हमने मौज करी ली, अब आज से काम शुरू कर ही दिया जाए।
14: लेकिन सिन्हा साहब दरिया दिल आदमी है, खूबसूरत रेलवे स्टेशन पर कमरा बुक करवा दिया, यहाँ वाकई लिखने का मूड बन सकता है।
1: ये टेंशन तुम गधे हो चला राम। अबे मूड तो फुटपाथ पर बैठ कर बन जाता है, ये तो प्रोड्यूसर पर रुआब गालिब करने की बात है। और फिर ये जो सिन्हा है ना, ये नया मुर्गा है, बेटा पहली फिल्म बना दिया, कायदे से हलाल होना चाहिए कि नहीं? तुम ऐसा करो, होटल के मैनेजर को फोन करो कि एक बाल्टी गर्म पानी, एक प्लेट सलाद और एक डंडा मेरे कमरे में भिजवा दे जाओ।
14: एक बाल्टी गर्म पानी, एक प्लेट सलाद और डंडा, इनका आपस में कोई
1: ताल्लुक फाल्लुक तुमने समझोगे भैया? देखो अभी हम अपनी दवाई पियेंगे, सलाद सादने के लिए चाहिए, दवाई पी के हम नहाते हैं, अब नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए
14: जी।
1: और रात अंधेरे में डंडा पटकने की आवाज मुझे सन्नाटे और चौकीदार की याद दिलाती है।
14: जाते रहो,
1: सस्पेंस लिखने का मूड उसी से बनता है। तुम फोन करो, सामान मंगाओ, जाओ हम अभी आते हैं।
14: एक बाल्टी सलाद, एक प्लेट डंडा, नहीं गर्म पानी, सलाद डंडा।
1: अरे अभी अपनी खटर पटर बंद करो, मेरी खोपड़ी में छू रहा है।
14: सर आपने कहा था डंडे की आवाज
1: तैयार
14: आ गया सर।
1: क्या आ गया
14: आइडिया? जब आप अंग्रेजी बोलते ना तो आपको अक्सर आइडिया।
1: थैंक यू, यू आर वेरी क्लेवर असिस्टेंट। नहीं चलो लिखो
14: जी। बोलिए सर।
1: हाँ जी। रात का गहरा सन्नाटा है,
14: रात का गहरा सन्नाटा,
1: दूर से दो जिगरों के बोलने की आवाज आ रही है और गहरा सस्पेंस का माहौल है। लिखा।
14: लेकिन सर सिर्फ दो झिंगुर बोल रहा है, ये कैसे दिखाया जाएगा?
1: भैया दिखाया जाएगा है, शुरुआत में टोक दिया। अब ये डायरेक्टर का काम है, समझे मेरा? नहीं, तुम आगे लिखो।
14: जी जी बहुत अच्छा।
1: कैमरा पेड़ पर चढ़ा हुआ पेन कर रहा है,
14: कैमरा पेड़ पर चढ़ा हुआ पेन कर रहा है,
1: क्योंकि चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ है, इसलिए कैमरा भी कुछ नहीं देख पा रहा। कैमरा बेचैन होकर रोशनी की तलाश में घूमे जा रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, तभी उसकी नजर दूर एक बंगले पर जाकर अटकती है, जिसकी खिड़की से रोशनी की एक किरण बाहर फूट रही है। कट
14: कट,
1: कैमरा पेड़ पर से उतरता है चिलराम और दबे पांव बंगले की तरफ बढ़ता है।
14: कैमरा दबे पांव कैसे बनेगा बेबस साहब? क्या कह रहे हैं?
1: नहीं बनेगा तो गुंजा, तुम्हें नौकरी करने की नहीं है।
14: जी जी
1: कर कह रहा हूँ, वो लिखो चुपचाप, समझे?
14: जी।
1: उसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ बज रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जैसे भूत राज।
14: डर लग रहा है।
1: लग रहा है ना? अरे बेटा जब तुम डर रहे हो इसका मतलब फिल्म देखने वाले भी डरेंगे, और यही तो सस्पेंस फिल्म की कामयाबी है। आगे लिखो
14: जी।
1: शॉर्ट चेंज, एक हाथ क्लोजअप में कैमरे की तरफ झूम बढ़ता है, कैमरा लड़खड़ा जाता है, कैमरा मैन का हाथ फिसलता है और कैमरा हैंड उसके ऊपर आके गिरता है। कितनी प्यारी सिचुएशन है ना,
14: कितनी खौफनाक सिचुएशन।
1: अरे खौफनाक नहीं चेला राम, दर्दनाक कहो। जब कैमरामैन उठकर कैमरे को संभालता है, कैमरामैन भी टूटा हुआ और कैमरा भी टूटा हुआ। उधर बंगले से एक दर्द भरी आवाज में इको को को को को को को को को करती हुई गाने की एक लाइन उभरती।

0: मजा आया ना आखिर?
1: जी जी जी, मैं सिर्फ विजुलाइज कर रहा हूँ।
0: वेरी गुड, इट मींस यू आर आल्सो इम्प्रूविंग।
1: अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी वो देखा है?
0: कौन?
2: पूछ रहे गुरु जी, मैंने कभी नहीं देखा।
0: अरे हमने तो भूत भी देखे हैं। देखो चिला राम, इस फिल्म इंडस्ट्री में भूतों की कमी है नहीं। बच्चे एक बार ये भूत चिपक जाए ना तो बड़े बड़े हो जाने उतार पाते। चलो आगे लिखो
2: जी।
0: देखो कैमरा जो है वो क्लोजअप पर है।
2: किसके क्लोजअप पर सर?
0: अबे मेरे क्लोजअप पर सर। अब ये डायरेक्टर तय करेगा चिरा राम, तुम लिखो आगे।
3: जी जहाँ जनाब।
0: और हीरो घबरा कर और अचकचा कर आदाब करता है और घूम कर देखता है।
4: आदाब है?
0: अरे
1: अरे आप पहुंच गए?
5: जी हाँ, बस आपसे बस फोन पर बात हुई और फौरन ही मैंने प्लेन पकड़ लिया और फिर एयरपोर्ट से बाय रोड पर समझ लिए 3 घंटे में यहाँ पहुंच गया।
0: अच्छा किया, अच्छा किया। देखिए ना, मैं आप ही की ही स्क्रिप्ट को डिक्टेट कर रहा था। अरे साहब, सिन्हा साहब, क्या आइडिया है, क्या सस्पेंस है, और चलो राम की कसम, क्या क्या माहौल है। कसम से अगर आपने साहब इसी तरह से पिक्चराइज कर लिया तो बस मजे मजा आ जाएगा। अरे लोग डर के मारे हाल छोड़कर भाग जाएंगे। जो प्रोजेक्शनिस्ट है वो प्रोजेक्टर बंद कर देंगे, सिनेमा घरों में ताले लग जाएंगे और शहर में कर्फ्यू।
5: बेबस साहब, आप फिल्म का सीन लिख रहे हैं कि मेरी मौत का वारंट?
0: अरे वो तो तभी लिख गया था भाई साहब जब आपने पिक्चर बनाने का फैसला किया। क्यों भाई?
5: जी,
0: मैं कह रहा था सिन्हा साहब कि इस सीन का हॉरर कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है कि हिचकॉक जो है ना उसकी सारी फिल्में हिट हो जाएंगी।
5: लेकिन मैं कमजोर दिल का आदमी हूँ, डॉक्टरों ने ए सर्टिफिकेट वाली फिल्में देखने तक को मना किया हुआ है। आए, आए, भला इतना हॉरर में कैसे शूट कर पाऊंगा बताइए।
0: सुनिए, ये बात तो आपको मुझसे स्क्रीन प्ले लिखवाने से पहले सोच लेना चाहिए।
5: जी
0: भाई, मेरा क्या करूं, मैंने तो हॉरर और सस्पेंस में स्पेशलाइज किया हुआ।
5: जी
0: हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भैया मैं जासूसी नावल लिखा
5: है।
0: मैंने कम से कम 1500 जासूसी और भूतिया नावल लिखे।
5: देखिए बेबस साहब, नाराज मत होइए, फिल्म इंडस्ट्री के इतने सीनियर राइटर हैं और मैं भी नया नया दाखिल हुआ, मैं आपकी बात कैसे काट सकता हूँ। लेकिन मेरी दरखास्त सिर्फ इतनी थी कि अगर आप हॉरर को थोड़ा हल्का कर दें तो क्या नहीं चलेगा?
0: हॉरर जी, हल्का?
5: जी हाँ, प्लीज।
0: चल जाएगा, थोड़ी रकम बढ़ानी पड़ेगी।
5: थैंक यू, थैंक यू, वो सब हो जाएगा।
0: चला देंगे। ठीक है, मैं यहाँ एक वो एक डांस सीन डाल दे रहा हूँ। देखिए चलो राम, वीरान बंगले में एक भूतनी नाच रही है।
5: भूतनी? बेबे साहब, प्लीज मुझ पर रहम करिए। सुनिए, कोई कम खौफनाक सीन डाल दीजिए ना।
0: अरे पहले हॉरर हल्का, अब खौफनाक में भी हल्का, पर ठीक है, हमारा क्या जाता है। हम वो जो है हम हेमा मालिनी का डांस डाल देते हैं।
5: हेमा मालिनी का? सुनिए तो, लेकिन वो हेमा मालिनी का डांस डालने के लिए तो हेमा मालिनी को बुक करना पड़ेगा और फिल्म लो बजट से हाई बजट हो जाएगी। मैं तो फाइनेंस कहां से जुटाऊंगा?
0: डॉक्टर ने कहा था कि आप मुझे से फिल्म लिखवाइए, बनवाइए।
5: जी मेरी बीवी ने कहा था और इत्तेफाक से वो डॉक्टर भी है।
0: करेला भी है और नीम भी चढ़ा है। तो भैया मजबूरी है, ऐसा है कि तो फिर आप ही मुझे बता दीजिए भैया कि मैं क्या सीन लिखूं। आप ऐसे मिले,
5: आप ऐसा करिए कि आप हीरो को बंगले के पास पहुंचा दीजिए।
0: अच्छा,
5: जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात वहां बचपन की सहेली से होती है। अच्छा? जो वहां पर बैठी हुई कीर्तन कर रही है।
0: कट, कीर्तन?
5: जी हाँ, जरा रास की बात है, अपना कान तो इधर लाइए।
0: कौन सा?
5: अजी कोई सा भी। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझसे वादा किया है कि अगर फिल्म में धार्मिक भावना होगी तो फिल्म दूने दाम पे खरीदेगा।
0: अरे तो अपना कमीशन पक्का हो गया। अच्छा ठीक है। अरे भाई, हाँ भाई चला राम, देखो ऐसा है कि भाई देखो, हीरो जो है वो चुपचाप जाकर उसके पास बैठ जाता है और फट से उसके हाथों से मजीरा छीनता है और कीर्तन करने लगता है।
5: बिल्कुल ठीक, अब आप मेरा आइडिया समझ गए ना। और जैसे ही कीर्तन होता रहता है वो लड़की भगवान की मूर्ति के चरणों में सिर झुकाती
0: है।
6: हे भगवान, मुझे मेरे प्रेमी से मिला दो ना।
5: भगवान प्रकट होकर उसे इन्फॉर्म करते हैं, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे पास बैठा है बगल में।
6: सच भगवान? अरे तुम कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? मैं तो कब से इस भूते बंगले में तुम्हारे लिए तपस्या कर रही थी। चलो तुम आ गए, अच्छा हुआ।
0: और वो घूम कर देखती है, उसके लग जाती है कहाँ गले।
5: नो, बेबसा,
0: फिर उसे देखती है लेकिन पहचान नहीं पाती है।
5: अच्छा?
0: और फिर भगवान से कंप्लेंट करती है।
5: क्या?
6: लेकिन तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम वो नहीं हो। वो तो छोटा सा पलमा था, सिर्फ 12 बरस का, और तुम तो जवान हो, 24-25 बरस के।
0: खट उसके बाप भगवान, खुदा के उसे समझाते हैं।
3: परमिके, जब तुम इससे पहले मिली थी तब ये 12 बरस के बाल भगवान, मेरा मतलब बाल प्रेमी थे, और आप 12 बरस के बाद इससे मिल रही हो तो ये 24 बरस के हो गए दाढ़ी मूंछों वाले।
6: हाँ भगवान, मुझे माफ कर दो, तुम भी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो ना, मुझसे भूल हो गई। अब कहीं ना जाना, नहीं तो जिंदगी पर 12 का पहाड़ा पड़ना पड़ेगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60।
5: क्या बात है बेबस, आपके पैर कहाँ है?
0: अरे नहाए नहीं है।
5: कोई बात नहीं, जाने दीजिए। किस खूबी से आपने मेरे आइडिया को विजुलाइज किया? अरे अब तो फिल्म हिट के सुपर हिट हो गए।
0: अब हम तो फिल्म ही ऐसे लिखते हैं, या तो होती है हिट या जाती है पिट।
5: देखिए बेबस साहब, आपकी इस बात से तो मैं नर्वस हो रहा हूँ।
0: नर्वस हो गए आप? वेरी गुड साइन। इसे कहते हैं सस्पेंस।
5: असिस्टेंट जी, जरा मुझे बाथरूम तो दिखाइए।
0: चल आराम साहब के बाथरूम दिखाओ।
5: लेकिन मैंने तो कोई शेर नहीं कहा।
0: बाथरूम में शेर।
5: अरे शेर नहीं, शेर का बच्चा होगा। जी हाँ, मैं शिकारी हूँ। मेरा नाम रघुनंदन सिंह है,
0: ठीक है।
5: पास के जंगलों में आदमखोर शेरनी को मारने के लिए मुझे बुलाया गया था। उसी शेरनी का बच्चा है जिसे मैंने चिड़ियाघर को देने के लिए पकड़ा है। अभी मुश्किल से ही महीने भर का है और आप लोग खामखा डर गए।
0: अरे डरने की तो बात ही है, अरे शेर तो शेर है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा चाहे जवान हो। बताइए वो बच्चा जो भी है हमारे बाथरूम में
5: क्या है? बताता हूँ।
0: बताइए।
5: दरअसल बात ये है कि हम दोनों के कमरों का ये कॉमन बाथरूम
0: है। क्या करते हो, दो कमरे बाथरूम है?
5: सुनिए, और दोनों तरफ से इसमें दरवाजे खुलते हैं।
0: हम क्या करें
5: भाई, मैं रात को देर से आया था।
0: क्यों?
5: और मैंने बाथरूम में इसे बंद कर दिया बस।
0: अच्छा। जी सिन्हा साहब, इसे कहते हैं क्या? सस्पेंस।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: तू जो है,
4: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज़ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपने दोस्त की शादी में।
1: क्यों, क्या हुआ है?
0: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
1: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स। वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
0: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
1: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स जो है मेन रोड गोपालगंज में। तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
0: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ई सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ई सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003, 62042434003।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने एथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्याय व्यवस्था को और तेज तथा प्रभावी बनाने के लिए 100 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौधरी ने ये जानकारी दी। इससे पहले बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने समयबद्ध तरीके से मामलों के निष्पादन की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।
1: मैं पिछले 2 साल से लगातार आग्रह कर रहा हूं कि 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्थापना किया जाए और जरूरत पड़े तो अभी आप किसी को चार्ज दें। जिले में केसेस बहुत लंबे चल रहे हैं और पहले फिक्स था कि 14-15 केसेस को आपको सुनवाई करके पूरा करना है, वो टाइम फ्रेम नहीं हो पा रहा है। इसकी व्यवस्था हमको जो भी सरकार के स्तर पर करना है हमको निर्देशित कीजिए। हमारी सरकार आपको एकदम पूरी तरह आश्वस्त करती है कि रूल ऑफ लॉ के लिए जितनी भी राशि लगाना पड़ेगा हम लोग हर हालत में लगाने का काम।
0: मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के उपयोग पर बल दिया।
1: अब AI का उपयोग हम कर सकते हैं और AI उपयोग करने से सब पता चल जाएगा कि कौन थाना में आया था, कौन कहीं क्राइम यदि CCTV कैमरा में हो रहा है। यदि हम AI को यूज करते हैं तो आपको रेड फ्लैगिंग, ग्रीन फ्लैगिंग, जाओ जिस भी तरह के आप अपने चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे उससे आप सीधे कनेक्ट हो जाएंगे कि किस इलाके में हमको अधिक ध्यान देने की जरूरत है और कहां गड़बड़ी हो रही है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ट और बिहार जुडिशियल एकेडमी ने संयुक्त रूप से किया है। सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश

0: नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम सुनियोजित चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था।
1: इट इज सपोर्टेड बाय साइंटिफिक एविडेंस।
2: यह वैज्ञानिक प्रमाणों, ऑटोमोटिव निर्माताओं द्वारा व्यापक परीक्षण और उनका समर्थन करने वाली एजेंसियों यानी ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI और SIAM का समर्थन प्राप्त है, और यह वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही है जिनका पालन जीवाश्म ईंधन को हरित बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है।
1: टू ग्रीन द फॉसिल फ्यूल्स टू लोअर द कार्बन एमिशंस।
0: केंद्र सरकार ने पायरेसी की खबरों को देखते हुए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, ओटीटी प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों के हितों की रक्षा करना है। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक विकास को गति दी जा रही है और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है। आज रोहतास के विक्रमगंज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा राज्य में उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने निर्णय लिया है कि यदि 30 दिन में जो बाकी सब डिपार्टमेंट है, यदि वो उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को लाइसेंस देने का काम नहीं करते तो 31वें दिन उद्योग विभाग सेल्फ अप्रूव सभी लाइसेंसेस को करने का काम करेगा। और अब जो ये 30 दिन का सिंगल विंडो सिस्टम है, ये कोई कागजी या काल्पनिक बात नहीं बल्कि बिहार की सच्चाई है।
0: राज्य सरकार ने झारखंड से बिहार में प्रवेश करने वाले अवैध और ओवरलोडेड गिट्टी लदे वाहनों के खिलाफ निगरानी बढ़ा दी है। राज्य परिवहन आयुक्त ने सभी सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों की सघन जांच करने और मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने बहुचर्चित टेंडर घोटाले में गिरफ्तार भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव मुमुक्षु कुमार चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत यह कार्रवाई की है। मुमुक्षु कुमार चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण कर इतिहास रच दिया है। 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में डेब्यू करने वाले वैभव भारत की सीनियर पुरुष टीम के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 1989 में 16 वर्ष की आयु में पदार्पण करने वाले सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इधर भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा T20 क्रिकेट मैच मैनचेस्टर में जारी है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर और 2 गेंदों पर 84 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के लगाए। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 39.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की संभावना है। जहानाबाद जिले के खोसी थाना क्षेत्र अंतर्गत चैती पिपरा स्थित फल्गु नदी में बालू खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हो गए। SDPO कृति कमल ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई है।
1: चैती पिपरा गांव में 2 पक्षों के बीच बालू उठाव को लेकर के विवाद हुआ और उसी में गोली चली है। अभी की सूचना के अनुसार 6 लोग घायल हैं। जो भी लोग इसके दोषी होंगे उनके विरुद्ध जो भी उचित विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
0: पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा डालने के आरोप में स्थानीय थाने में राजद सांसद सुधाकर सिंह समेत 57 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद तुहन ने नेपाल की नागरिकता रखने वाली 10 महिलाओं को भारतीय नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया के तहत शपथ दिलाई। इन सभी महिलाओं का विवाह अररिया जिले में हुआ है। मुजफ्फरपुर जिले के बोचा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 युवतियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदि गोपालपुर चौक के पास एक अनियंत्रित कार ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी जिससे दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र के पूरब टोला में करंट लगने से 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बोचाही के पास पिछले गुरुवार को हुई लूट के मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की रकम और हथियार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। मधुबनी जिले के जयनगर में पेट्रोल पंप पर पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश कर रहे 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। भोजपुर जिले में महुली घाट स्थित पीपा पुल पर पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 1 होमगार्ड जवान भी शामिल है। बरौनी जंक्शन पर उत्पाद विभाग की टीम ने कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन से 118 ग्राम हेरोइन बरामद की है। मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महोदीपुर गांव में पुलिस ने एक चारपहिया वाहन से 124 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। रोहतास जिले के सासाराम नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जिले के सिवायपट्टी थाना क्षेत्र में आज तड़के अपराधियों ने एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन गंगा पुल के स्लैब का एक हिस्सा गिर जाने से 6 मजदूर घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रीय एड्स संगठन के निर्देश पर भभुआ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में रेड रन के तहत 5 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 100 फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा की। अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर दिया बल। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने इथेनॉल को स्वच्छ ईंधन बताया, कहा यह अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में टीम इंडिया में डेब्यू कर रचा इतिहास, सचिन तेंदुलकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
5: रेडियो रिमझिम
4: सुनो दिल से।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर JJ शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
7: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
8: जो लोग डायबिटीज से परेशान हैं, वो डरे नहीं, परहेज करे नहीं। वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा शुगर यानी डायबिटीज का इलाज कम खर्च में सब कुछ खाते हुए सफलता पूर्वक कर रहे हैं। आप भी दवा खा खा कर इलाज करा कर निराश एवं परेशान हो गए हैं तो एक बार अवश्य मिले वैद्य SP त्यागी जी से। डायबिटीज के अलावा और सब बीमारी का इलाज, जैसे
9: सभी प्रकार के नशा जैसे शराब, टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप, गांजा, स्माइक के इलाज और गठिया, टीका, पथरी, कमर दर्द, घुटना दर्द, दमा, मिर्गी, दाद, दिनाए और सभी चर्म रोग एवं लिकोरिया, मासिक खराबी, बवासीर, पेट रोग, शुगर, गैस्ट्रिक, शीघ्र पतन, शुक्राणु में कमी, नपुंसकता, धातु चिंता और चर्म रोग में दाग, दिनाए, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस तथा
8: पथरी इत्यादि सभी रोगों का इलाज वैद्य SP त्यागी जी आयुर्वेदिक दवा द्वारा सफलता पूर्वक करते हैं।
10: वैद्य SP त्यागी जी से मिलने का पता
8: प्रत्येक शनिवार गोपालगंज बस स्टैंड थावे रोड भी मार्केट के बगल में कृष्णा जी के मकान में।
10: जानकारी के लिए कॉल करें 99554-94-53
8: और 90-97-61-60-02।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
6: रेडियो रिमझिम,
5: सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: 21 वर्षों से सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य गढ़ने की पहचान है एक नाम, सेंट जॉन स्कूल, सासा मूसा गोपालगंज, शाखा राजापुर बाजार गोपालगंज। CBSE पैटर्न पर आधारित शिक्षा, नर्सरी से क्लास 10वीं तक, कंप्यूटर एजुकेशन, बस फैसिलिटी, रेगुलर टेस्ट और पेरेंट मीटिंग्स, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ सेफ और पीसफुल कैंपस।
1: सेंट जॉन स्कूल में बच्चों को सिर्फ सिखाया नहीं जाता, उन्हें तराशा जाता है।
0: तो देर मत कीजिए,
1: सेंट जॉन स्कूल सासा मूसा गोपालगंज, कॉल अस 9939721308।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: 9.4
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
9: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में सुपरवाइजर के 12 पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा, आयुध निर्माणी नालंदा की वेबसाइट munitionsindia.in। भारत सरकार का उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। अधिकारी वित्त कुल 5 पद, अधिकारी मानव संसाधन 1 पद, अधिकारी चिकित्सक कुल 2 पद, बैकलॉग, वरिष्ठ प्रबंधक सीसी लैब रिक्तियां 1, अधिकारी विधि विभाग 1 पद, सहायक अभियंता 5 पद, अभियंता विद्युत कुल 5 पद, वरिष्ठ अभियंता विद्युत कुल 5 पद, उपप्रबंधक 3 पद और अभियंता सिविल 2 पद। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ अभियंता सिविल के 2 पद भी रिक्त हैं। योग्यता, अनुभव, आरक्षण, वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र का 23 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 तक का अंक। इसके अतिरिक्त आप कंपनी की वेबसाइट www.rcfltd.com के भर्ती अनुभाग पर जाकर भी ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अग्रणी महापत्तनों में से एक है। ये प्राधिकरण इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सहायक प्रबंधक ड्रेजर टग्स। और सहायक प्रबंधक फ्लोटिंग क्राफ्ट्स। संपूर्ण विज्ञापन, आवेदन पत्र और अन्य विवरण के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। वैज्ञानिक अधिकारी बी, सहायक सुरक्षा अधिकारी ए, कार्य सहायक और परियोजना पद हैं परियोजना वैज्ञानिक अधिकारी बी। विवरण के लिए देखिए वेबसाइट www.hbcse.tifr.res.in। गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ट्रस्ट संस्थान आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 1, टीचिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, लाइब्रेरियन एक पद, प्रोजेक्शनिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट और अपर डिवीजन क्लर्क। अधिक जानकारी के लिए देखिए गांधीग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान की

0: और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
1: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
2: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
1: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
3: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
1: कॉल करें 85070-32042 पे।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
5: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: इतना परेशान क्यों दिख रही हो मेघा?
8: आसपास हर जगह चाचा जी का इलाज करा लिया, अब लगता है उन्हें दिल्ली लेकर ही जाना पड़ेगा।
7: अरे अपने गोपालगंज में गोरखपुर, पटना और दिल्ली जैसे बेहतर मेडिकल सुविधाओं के साथ खुल गया है एम्स के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन जी के देखरेख में जिले का पहला वेंटिलेटर युक्त सक्षम हॉस्पिटल, जहां पर 24 घंटे ICU इमरजेंसी सेवा, एक्सपर्ट मेडिकल टीम द्वारा विभिन्न रोग जैसे हृदय रोग, शुगर, दमा, नस रोग, लकवा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है।
8: आज विजिट करें सक्षम हॉस्पिटल, कमला राय कॉलेज रोड, इंडियन गैस एजेंसी के बगल में, गांधी टेक्निकल कॉलेज के सामने, डॉक्टर कॉलोनी, गोपालगंज। कॉल करें 7050061444 या 7870331444।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
1: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6052-62112 पे।
12: प्रसाद क्लिनिक,
13: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
12: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
13: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
1: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सांसद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण दो की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
1: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
3: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
11: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
12: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष शग्यों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
13: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
14: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
13: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
14: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
15: क्या चाहते हो? मैं ना जाऊँ अपनी दोस्त की शादी में।
16: क्यों, क्या हुआ है?
15: तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिजाइनर लहंगा, साड़ी और गाउन दिलाओगे।
16: अरे तो कौन सी बड़ी बात है, आज ही चलते हैं गोपालगंज में लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मन पसंद के अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे।
15: फिर ये भी ठीक है, चलो चलते हैं लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स।
16: शादी विवाह या किसी भी शुभ अवसर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लक्ष्मी वस्त्रालय एंड गारमेंट्स, जो है मेन रोड, गोपालगंज में।
17: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
18: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
17: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
19: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई अलग अलग जगहों से शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। हत्या के प्रयास में भी हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। एक दिव्यांग की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। पथ संचलन की तैयारी में जुट गया है आरएसएस। अवैध ब्रेकर अब बन गया है लोगों के मुसीबत का कारण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में माझागढ़ थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भैंसही कोडर में अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि नागेंद्र यादव अपने घर में अवैध हथियार रखा हुआ है। इसकी सूचना पुलिस को मिली। सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस ने वरीय पदाधिकारियों को जानकारी देने के बाद पुलिस बल के साथ भैसही कोड़ार गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखकर वह व्यक्ति घर से निकलकर भागने लगा, जिसे पुलिस बल ने दौड़ाकर पकड़ लिया। पूछताछ में पकड़ा गया आरोपी नागेंद्र यादव पिता विश्वनाथ प्रसाद साकिन कोड़र भैंसही थाना माझागढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से एक देसी कट्टा, एक खोखा बरामद हुआ है। बरामद हथियार और खोखा को पुलिस ने जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और माझागढ़ थाना कांड संख्या 295/2026 दर्ज कर आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही अवैध हथियार की खरीद बिक्री और उनसे जुड़े नेटवर्क के संबंध में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कई शराब तस्करों को अलग अलग जगहों से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई माझागढ़ पुलिस ने की। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर कोइनी गांव में मोहम्मद कासिम के बथान में पुलिस ने छापेमारी की और यहां से भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। बताया जा रहा है कि इसके यहां से 306 लीटर देशी शराब बरामद की गई है। इस मामले में पुलिस ने भाग रहे आरोपी मोहम्मद कासिम पिता अली मोहम्मद साकिन कोइनी थाना माझागढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इसके एक और साथी की पहचान की गई है जो फरार हो गया। पुलिस अब दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रही है। इधर कटिया थाना की पुलिस ने भी 10 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी शमसुल मियां पिता इजराइल हक साकिन मिरलीपुर थाना था में और दूसरा सिया लाल प्रसाद उर्फ सिया राम प्रसाद पिता धनु प्रसाद साकिन देवापुर थाना था में। दोनों को गिरफ्तार कर इनकी मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। माझा थाना की पुलिस ने भी 7 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी प्रिंस कुमार पिता राम नरेश राम साकिन मुजौना थाना माझागढ़ को पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसकी मोटरसाइकिल और शराब को पुलिस ने जब्त किया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी विशंभरपुर थाना क्षेत्र के काला मटिहनिया के पास छापेमारी करते हुए 56 लीटर से अधिक शराब को जब्त किया है। इस मामले में तस्करों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। आज हत्या के प्रयास में भी कई आरोपियों की अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तारी हुई। एक कार्रवाई भोरे थाना की पुलिस ने की। इसने 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी रघुनाथ कुहार पिता हीरालाल कुहार, संजय कुहार पिता रघुनाथ कुहार और जयसवाल कुहार पिता रघुनाथ कुहार बताए जा रहे हैं। ये तीनों चकरवा खास थाना भोरे के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने सिधौलिया थाना क्षेत्र के डंगसी गांव में भी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 56 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब को जब्त किया है। इसमें दो तस्करों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों सिधौलिया के डंगसी के ही रहने वाले हैं। एक आरोपी का नाम उत्तम सिंह है और दूसरा पीयूष सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ने शराब को जब्त कर दोनों को आज पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में 4 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में जय प्रकाश उर्फ जय प्रकाश महतो, आनंद कुमार, ये दोनों पिता लाल बाबू महतो, साकिन कृतपुरा थाना बैकुंठपुर के निवासी हैं। इसके अलावा नामजद आरोपी नगेंद्र महतो और सिकंदर महतो, ये दोनों भाई हैं, स्वर्गीय चंद्र देव महतो के पुत्र हैं और ये लोग भी कृतपुरा के ही रहने वाले हैं। इन चारों आरोपियों को पुलिस ने दोनों पक्षों के आवेदन पर दोनों पक्ष से दो दो लोगों को गिरफ्तार किया है और आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सिधौलिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसमें एक आरोपी शेषनाथ सिंह पिता सत्यनारायण सिंह, साकिन हलुआर थाना सिधौलिया जिला गोपालगंज का निवासी है और एक दूसरे मामले में सिधौलिया पुलिस ने हत्या के ही प्रयास को लेकर अभियुक्त विशाल शाह को गिरफ्तार किया। यह जितेंद्र सिंह का पुत्र है और सिहोरवा गाँव का निवासी है, सिधौलिया थाना क्षेत्र का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इन दोनों को भी पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना क्षेत्र के मुकेरी टोला गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सड़क पार कर रहे एक दिव्यांग को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में मौके पर ही दिव्यांग की मौत हो गई। मृतक की पहचान नौका टोला भेड़िया गांव निवासी राजेंद्र चौधरी के पुत्र मनोज यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 531 को जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही नगर थाना और थामे थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों को बुझाकर शांत कराया जा रहा था। थाने की अंचलाधिकारी कुमारी रूपम शर्मा भी घटना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने बुझाने में जुट गई थी। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया है और इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में अघोषित रूप से अवैध ब्रेकर कई लोगों के जान पर आफत बरसा रहा है। जिले में आज जगह जगह लोग सड़क के किनारे अपना घर बना लेते हैं और घर के आगे एक ब्रेकर बना देते हैं और ब्रेकर भी ऐसा वैसा नहीं, बिजली विभाग के पोल को चोरी कर और उसको ही सड़क पर डालकर ब्रेकर बना दिया जाता है। यह ब्रेकर इतना जानलेवा साबित होता है कि जिले में कई लोगों की जान भी चली गई है। इस ब्रेकर से गुजरने वाला व्यक्ति काफी मुसीबत को मोल लेते हुए अपनी गाड़ी पार कराता है। कई गाड़ियों का इंजन और चेचिस तक इस ब्रेकर में चिपक जाता है और उसमें रगड़ कर डैमेज होता है। इस ब्रेकर ने लोगों को मुसीबत में डालना शुरू कर दिया है। जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी भी पूरे इलाके में जगह जगह दौरा करते हैं, इस अवैध ब्रेकर से भी होकर गुजरते हैं, परंतु प्रशासनिक स्तर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और ऐसे ब्रेकर रात्रि में या किसी आदमी के छोड़े से नजर में चूक होने से उनकी गाड़ी गिर जाती है, वे जख्मी भी हो जाते हैं। इस अवैध ब्रेकर को लेकर लोग अब जगह जगह सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिला प्रशासन ऐसे ब्रेकरों पर कार्रवाई करे। जो लोग भी अपने घर के सामने बिजली का पोल लगाकर ब्रेकर बनाए हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। बिजली का पोल लगाकर ब्रेकर बनाना एक तो खुद में ही बहुत बड़ा गुनाह है, बिजली के पोल को चोरी कर उसे सड़क पर ब्रेकर के तरह इस्तेमाल करने वाले बहुत बड़े गुनाहगार हैं और इन पर अच्छी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोपालगंज की जिला इकाई गोपालगंज शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के अवसर पर पथ संचलन का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि 5 जुलाई यानी रविवार को सभी स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को पूर्ण गणवेश के रूप में शाम 3:30 कमला राय कॉलेज के विज्ञान संकाय में एकत्रित होने को कहा गया है। वहां से RSS का पथ संचलन कार्यक्रम शुरू होगा जो पूरे शहर में घूमते हुए भगत सिंह चौक नगर थाना के पास पहुंचेगा। इसको लेकर तमाम लोगों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने पथ संचलन कार्यक्रम में हिस्सा लेने की अपील की है। सभी सदस्यों को पूर्ण गणवेश में आने को कहा गया है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव में ट्रैक्टर की टक्कर के बाद दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ, मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे और तलवार चलाए गए। इसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जादोपुर थाना क्षेत्र के गमहरिया गाँव में भी पुरानी रंजिश में जमकर मारपीट हुई, दो पक्षों में लाठी डंडे चले जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल है। महिला को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है जहां महिला का इलाज चल रहा है। गोपालगंज के नव पदस्थापित सिविल सर्जन डॉक्टर इजराइल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर रहे थे। आज उन्होंने इमरजेंसी आईसीयू, पिंक वार्ड, लेबर वार्ड समेत सभी प्रमुख वार्डों का निरीक्षण किया, जायजा लिया। स्वास्थ्य सेवाओं और साफ सफाई तथा मरीजों को मिल रही सुविधाओं की उन्होंने समीक्षा की। लापरवाही नहीं बरतने और व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इधर वैज्ञानिकों ने किसानों को वैज्ञानिक तालाब प्रबंधन एवं मत्स्य स्वास्थ्य संरक्षण की उन्नत तकनीकों से अवगत कराते हुए रोहतास जिले के करगहर प्रखंड के कुशलाही स्थित मत्स्य फार्म में वैज्ञानिकों ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दिवसीय मत्स्य पालन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के 35 मत्स्य पालकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तालाब प्रबंधन, मत्स्य स्वास्थ्य संरक्षण तथा उत्पादकता बढ़ाने वाली आधुनिक तकनीकों के प्रति जागरूक करना बताया जा रहा है। माझा थाना की पुलिस ने चीटिंग के मामले में एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी रत्नेश उपाध्याय, पिता राम कृपाल उपाध्याय, जो बेलसड़ गांव का निवासी है, इन पर चीटिंग का केस दर्ज था। तभी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई अलग अलग जगहों से शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। हत्या के प्रयास में भी हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। एक दिव्यांग की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद लोगों ने किया सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन। पथ संचलन की तैयारी में जुट गया है आरएसएस। अवैध ब्रेकर अब बन गया है लोगों के मुसीबत का कारण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
20: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
21: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
22: ओम नमः शिवाय।
23: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
22: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
23: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
22: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
23: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
22: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
23: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
22: बुकिंग नंबर 91555485507 या 91629335383।
23: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
22: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
23: बोलबम हर हर महादेव।
0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: रियाज रेट्रो।
25: हेलो हेलो, एलो जी सनम, हम आ गए फिर वही दिल लेकर। सही है ना, आफ्टर ऑल सीजन 4 का और पहला एपिसोड है ये। मैं आपके साथ रिया फिर से, और अंदाज अपना अपना का ये गाना वाज अ ट्रिब्यूट टू ओपी नैयर जी। वो क्लासिक मेलोडी रिदम का साथ, वो टांगे की घंटी, वो हॉर्स हूव्स का क्लिप क्लॉप कीपिंग बीट। 16 जनवरी ओपी नैयर जी की सालगिरह। हर सीजन मिस हो जाता है मनाना, क्योंकि इस वक्त मैं नॉर्मली ब्रेक पर होती हूँ, तो इस बार सोचा नथिंग डूइंग। एआर रहमान का बर्थडे भी निकल गया और येसुदास जी का भी, पर एक रेट्रो पॉडकास्ट के 3 सीजन निकल जाएं और ओपी नैयर जी के नाम एक एपिसोड ना हो पाए, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, और वो ये कि छुट्टी और भतीजे की शादी के बावजूद हमें आना पड़ेगा और आपके नाम ओपी नैयर जी का ये गाना लगाना पड़ेगा।

आशा जी, मोहम्मद रफी, साहिर लुधियानवी के बोल, फिल्म नया दौर, संगीत उनका जिनके जन्मदिन के शुभ उपलक्ष पर हमने शुरू कर दिया है सीजन 4, यानी कि ओमकार प्रसाद नैयर जी। मांग के साथ आपका मैंने भी मांग लिया है संसार। थैंक यू रियाज रेट्रो फैमिली को 3 साल में अपनी मोहब्बत से इस तरह सींचने के लिए। ट्विटर हैंडल मेरा @MsRiyaMukherjee, MsRiyaMukherjee, उनके लिए जो सीजन 4 से शुरुआत कर रहे हैं। और वैसे आप लोगों ने जो मेरे बर्थडे के लिए किया, द लेस सेड द बेटर। आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम टच्ड, आई एम एम्बेरस्ड आउट ऑफ माई ब्रेन्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैसेजेस नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि इट्स अ लिटल क्रेजी। ओके, लेट्स गेट बैक। रियाज रेट्रो। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, ओ तेरा क्या कहना। ऐसा लगता है कंपोजर ओपी नैयर के बारे में ही लिखी हो ये लाइंस मजरू साहब ने। काफी डैशिंग और डेबोनेर थे वो। फेल्ट हैट, क्रिस्प सूट्स और टाइज में दिखने वाले ये कंपोजर वेस्टर्नाइज थे चाल ढाल में भी और संगीत में भी। मैं रिया, और अगर मुझे कोई कहे कि ओपी नैयर की म्यूजिक को डिस्क्राइब करो 2 लफ्जों में, तो मैं कहूंगी सिंपल रिलायबिलिटी। संगीत में कोई फॉर्मल तालीम नहीं ली थी कभी उन्होंने अपेरेंटली। ये एक नेचुरल इनबॉर्न काबिलियत थी और तराशा उन्होंने इसको 50s और 60s में इस तरह कि हिट पर हिट एल्बम्स बनाते रहे। ऐसे साउंडट्रैक्स जिसका हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, पर हम जब हिंदी फिल्मी गीतों को हमबल कहते हैं ना, डिटीज कहते हैं, ओपी नैयर का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस बॉडी ऑफ वर्क को बनाने में। हमारे अंताक्षरी वाले गाने अक्सर उन्हीं के बनाए गीत होते हैं।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: प्रसाद क्लिनिक,
4: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
3: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
4: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
5: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
6: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
7: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
8: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: याद रखना, अगली बार जब यह से गाना आए अंताक्षरी में, OP नैयर जी के ये दो गाने जो अभी सुनाए बहुत काम आएंगे तब। ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा फिल्म मेरे सनम, आवाज ऑफ कोर्स आशा जी, बोल मजरू साहब। और फिर तारीफ करूं क्या उसकी, जिसकी शुरुआती लाइन यह से है, ये चांद सा रोशन चेहरा, कश्मीर की कली का आइकॉनिक शिकारा सॉन्ग, जिसमें फूलों के बीच खुद एक फूल ही लगी है छोटी सी शर्मिला टैगोर, आवाज मोहम्मद रफी, फॉर अ मैड कैप शम्मी कपूर, जिन्होंने हिंदी फिल्म हीरो को सिखाया कैसे कूदते फांदते भी आशिकी की जा सकती है।
10: रियाज रेट्रो, ओनली ऑन गाना।
9: है ना सिंपल रिलायबिलिटी ओपी नैयर जी की धुनों में, और ये सिंपल रिलायबिलिटी कितनी कमाल की चीज है। और मेरी ये बात सुनकर आप मुस्कुराने लगे हैं, क्योंकि आप तो सोच ही रहे थे ना कि कब ये एपिसोड ओपी नैयर के साथ साथ कोई और भी बात छेड़ेगा। इतने सिंपल तो हम हो नहीं सकते हैं ना कि किसी और इमोशन को टटोल करना देखें साथ साथ। करेक्ट है, अब हम इतने सिंपल नहीं है, पर रिलायबिलिटी कितनी सिंपल बात होती है। जैसे ओपी नैयर के गीत जबान पे चढ़ेंगे, याद रह जाएंगे, गुनगुनाए जाएंगे, मुस्कान लाएंगे। काश कि इंसान भी ओपी नैयर की धुन होते, काश रिश्तों में वो इन्फेक्शियस रिदम ला सकते हम, वो मेलोडियस हार्मनी बना सकते हम। ओपी नैयर के गीत याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी सिंपल और स्वीट हो सकती है, आबो हवा में खुशहाली की एक लहर और गम में भी एक मासूमियत। वैसा गम नहीं जो लगे उम्र भर न छटेगा, पर ऐसा जो एक कॉल या एक मैसेज से ठीक हो जाए। हाँ, ओपी नैयर के गीतों में सारे जज्बात तो होते हैं भरपूर, पर एक लाइट ब्रीजी टच के साथ, जिन्हें सुन के लगे कि नथिंग इज सो अनमैनेजेबल। काश जिंदगी भी एक ओपी नैयर गीत होती।

0: एस एच बिहारी के बोल, बाकी क्रेडिट्स तो आप जानते ही है ना, इसीलिए लिरिसिस से शुरुआत की। आशा जी हमारे आज के बर्थडे लेजेंड ओपी नैयर के सुरों को संवारती हुई फिल्म सावन की घटा। वैसे इस फ्रेज से अब तो सिर्फ गोविंदा याद आते हैं, हटा सावन की घटा डायलॉग तो उनका पेटेंटेड था ना, नॉट द सॉन्ग, दैट्स ऑन सलमान। ओह, और उससे फिर कादिर खान जी याद आ गए, मे ही रेस्ट इन पीस। क्या कमाल के राइटर, विट, ह्यूमरिस्ट थे वो भी। ओहो, ये तो कहीं से कहीं पहुंच गए हम।
1: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
2: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
1: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
2: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
1: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
2: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
3: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
1: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
8: रियाज रेट्रो।
0: मैं रिया, और वैसे जो सिंप्लिसिटी ओपी नैयर के सुरों में थी, ऐसा जरूरी नहीं कि उनकी अपनी जिंदगी में या जाती रिश्तों में वही सिंप्लिसिटी रही हो। ये कहा जाता है उनके बारे में कि वो बहुत ज्यादा जिद्दी थे। एक बार मन बना लेते थे तो अड़ जाते थे बिल्कुल ही, और फिर उनको टस से मस करना नामुमकिन सी बात हो जाती। हिंदी सिनेमा के गोल्डन ईरा में काम करते एक लौते म्यूजिक कंपोजर हैं शायद ये, जिन्होंने कभी लता मंगेशकर से कोई भी गाना नहीं गवाया। क्यों, क्या अनबन हो गई, क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी धुनें उनकी आवाज के साथ तालमेल नहीं खाती? कैसी जिद पकड़ ली उन्होंने? सोशल मीडिया, वायरल वीडियोस, स्पाई कैम्स, स्टिंग ऑपरेशंस और बेयर ऑल डेयर ऑल इंटरव्यूज के पहले की जमाने की बातें हैं ये। गैस ही कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, पर सटीक तो कोई भी नहीं बता पाएगा कि माजरा क्या था। कैसा रहता अगर लता जी भी गाती तो? क्या आशा भोसले वो स्टार बनती अगर ओपी नैयर ने ठान ना लिया होता कि लता जी के बगैर ही वो कामयाब होकर दिखाएंगे? इन सब सवालों के जवाब तो है नहीं हमारे पास। किसी इंटरव्यू में तो उन्होंने बहुत साल बाद बताया था कि लता जी अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ मेलोडी हैं और इस देश की बेहतरीन गायिका, पर उन्हें अपने गीतों के लिए खुद बहुत रोमांटिक, आई गेस व्हाट ही मेंट इज सेडक्टिव, एक्चुअली सेडक्टिव वॉइसेस की दरकार थी, हालांकि उन्होंने कहा रोमांटिक, और इसलिए उन्होंने शमशाद बेगम, गीता दत्त और फिर आशा भोसले से ही बेशुमार गीत गवाए। पर कुछ तो थी जिसकी पर्दादारी थी।

0: जादू तो ओपी नैयर ने जरूर डाला था गीता दत्त की जिंदगी में, इन गीतों के जरिए उनको मेगा स्टार बनाकर, उनके करियर में चार चांद लगाकर। गीता दत्त को सक्सेस की चोटी छूने को मिली ओपी नैयर की वजह से, अंटिल शी वॉज सडनली रिप्लेस्ड बाय आशा भोसले। अजीब है ना, उनकी शादी में भी तो यही हुआ, गुरु दत्त के दिल में उनकी जगह ले ली थी वहीदा रहमान ने। How shattering this must have been for her God. दो गाने सुने आपने गीता दत्त की आवाज में, कैसा जादू फिल्म 12 o'clock से, और उससे पहले द सासी सुपरहिट बाबूजी धीरे चलना फिल्म आर पार, दोनों गानों के लिरिसिस्ट मजरू साहब।
1: रियाज रेट्रो
0: एग्जिट लाइट इंटर नाइट टेक माई हैंड वी आर ऑफ टू नेवर नेवर लैंड। गीता दत्त को तो ऐसा ही लगा होगा शायद जब उनका एग्जिट हुआ और आशा जी की एंट्री हुई। कहते हैं कि एक फिल्म में जब रोशन जी बीच में बाहर हो गए और यंग न्यू कंपोजर ओपी नैयर को लाया गया उनकी जगह, तब लता मंगेशकर, जो ऑलरेडी चार गाने रिकॉर्ड कर चुकी थी रोशन जी के साथ, वो परेशान हो गईं और अपस्टार्ट नए संगीतकार के साथ काम करने से मना कर दिया। इस बात पर ओपी नैयर का रिएक्शन यूं रहा कि मैडम, मैंने आपको कब कहा है कि आप मेरे लिए गाएं? इंडस्ट्री हैरान परेशान हो गई और सब रह गए दंग जब इस जिद्दी कंपोजर ने ऐलान कर दिया कि मुझे 5 साल दे दो, मैं आशा भोसले को लता मंगेशकर का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनाकर दिखा दूंगा। खुदा जाने क्या सच है क्या नहीं, पर उस पूरे मामले से एक कमाल की चीज हो गई। आशा भोसले की सेक्सी सिडक्टिव नॉटी आइडेंटिटी तो जरूर बन गई अपनी बहन से डिस्टिंक्ट और सेपरेट, पर उससे ज्यादा अच्छी बात आपको पता है मुझे क्या लगती है? क्योंकि ओपी नैयर जी लता मंगेशकर के साथ रिकॉर्ड नहीं करने वाले थे, तो उन्हें आशा जी से ऐसे गीत भी गवाने पड़े जो टिपिकली फिल्म एल्बम्स में लता जी के नाम जाते। That Great Divide की मस्ती वाला गाना आशा गाए सोलफुल लता, पर ओपी नैयर जब कोई सॉफ्ट सोलफुल इंटेंस मासूम ट्यून भी बनाते, तब भी वो छोटी बहन के पास ही जाते। और इस तरह हमें आशा भोसले की गायकी का एक ऐसा पहलू मिला जो शायद छुपा रह जाता अगर ओपी नैयर लता जी के साथ काम करते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: हसरत जयपुरी का लिखा कभी अंधेरा कभी उजाला का टाइटल ट्रैक, और उससे पहले दी अनफिल्म्ड सॉन्ग फ्रॉम प्राण जाए पर वचन न जाए। बिटर स्वीट क्योंकि पिक्चराइज नहीं हुआ, और ओपी नैयर आशा जी का लास्ट गाना था एक साथ, पर जिसके लिए आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो अवार्ड जो अपेरेंटली उन्होंने कलेक्ट नहीं किया। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, जहर भी चाहा अगर पीना तो पीने ना दिया। प्रोफेटिक लाइंस SH बिहारी के। देखा व्हाट आई मीन? ये गीत टिपिकली लता जी को जाते ना, अगर वो ऑप्शन होता ओपी नैयर के पास तो।
2: रियाज़ रेट्रो।
1: But then that was quintessentially ओपी नैयर, wasn't it? अपनी जिंदगी के पूरे सेकेंड हाफ 30-35 साल उन्होंने गीत ही नहीं बनाए। कहते हैं होम्योपैथ बन गए थे घर जलाने के लिए, रिश्ते टूटते बिखरते रहे पर ये ना झुके। एक अडॉप्टेड फैमिली के साथ थाने में रहने लगे, रफी साहब के साथ भी 2 साल तक काम नहीं किया था किसी अनबन के बाद, और उनकी जगह महेंद्र कपूर को इस्तेमाल करने लगे। शायद उन्हें लगा हो कि वो आशा इंस्टेड ऑफ लता वाला कमाल दोबारा कर देंगे, पर आई गेस हर बार नहीं हो पाता ना। हर किसी की पेडिग्री सेम नहीं होती, हालात माहौल एक जैसे नहीं होते। दीदी को हराने की जो आग थी आशा जी के अंदर, महेंद्र कपूर में शायद वो जोश ना रहा हो रफी साहब के साथ टक्कर लेने में। कहीं वो एडमायर करते होंगे, घबरा गए होंगे, हुनर में फर्क तो था ही। आपके साथ मैं रिया, और आपसे बात करते करते ही देखिए कैसे एहसास हो गया, नथिंग इज एज सिंपल एज इट सीम्स। सिंपल रिलायबिलिटी कहा मैंने ओपी नैयर के गीतों को, लाइट इजी ब्रीजी। पर जिंदगी एक गीत नहीं, एक महाकाव्य है, और 3 मिनट में जो चीज बड़ी आसान लगती है, 3 दशक में वही चीज काफी पेचीदा हो उठती हो शायद।

ओपी नैयर के लिए गाए गीतों में से शायद महेंद्र कपूर का सबसे बड़ा हिट फिल्म किस्मत बोल एसएच बिहारी रिप्रेजेंटेटिव गीत है एक तरीके से उनकी एसोसिएशन का, इसलिए चलाया। पर मुझे पर्सनली पता है कौन सा गाना ज्यादा पसंद है दोनों का, मेरी जान तुम पे सदके, ब्यूटिफुल सॉन्ग, उसी फिल्म से जिससे अभी हौले हौले चलो लगाया था, यानी सावन की घटा। मेरी जान तुम पे सदके में खास इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स और नोटेशन भी है जो कम मिला है ओपी नैयर के काम में। रफी साहब की आवाज में जो गाना आपको अभी सुनाया, आंचल में सजा लेना कलियां, फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ बोल मजरू, उसमें भी वो खास इंडियन टच है ना, रेयर एंड डिलाइटफुल जब ओपी नैयर करते थे ऐसा। मैं थी आपके साथ रिया, और किशोर दा कहां गए सब में? ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं गाया ओपी नैयर के लिए, गाया है। अब कंपोज करके रिकॉर्ड करके उनसे गवा के कहते हैं ओपी नैयर बहुत नाखुश थे फिल्म एक बार मुस्कुरा दो के गीत सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है से। उनको किशोर दा का काम बिल्कुल पसंद नहीं आया था अपेरेंटली, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ किशोर दास फाइनेस्ट रेंडिशंस, बहुत ही खूबसूरत गाना है। पर वो नहीं चला रही मैं। जाते जाते किशोर दा का एक ड्यूएट ओपी नैयर जी के पहले नायाब हीरे के साथ, जिनको मैंने बचा कर रखा था, यानी शमशाद बेगम, द वन हु गेव वे टू गीता दत्त, हु गेव वे टू आशा भोसले, हु गेव वे टू होम्योपैथी, लोनलीनेस, एनोनिमिटी। उनसे पूछो क्या वो कुछ अलग करते तो शायद उनका जवाब यही होता कि नहीं, जैसा भी था मैं तो मैं था ओपी नैयर, और ये तो तय है दैट ही डिड डेयर टू ड्रीम डेयर टू लव।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Addressing the program, the Prime Minister said the conflict in West Asia had triggered the biggest energy crisis of the 21st century, but India successfully overcame the challenge through timely decisions, effective diplomacy, and prudent management of national resources.
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
2: Mr. Modi also handed over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Home Minister Amit Shah called the inauguration of the new CG Semi OSAT facility and India's new leap towards self-reliance in technology. In a social media post, Mr. Shah said the new facility will further invigorate Gujarat as the country's growth engine and open vast employment opportunities for youth. Prime Minister Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand from Monday. At the invitation of Indonesian President Prabowo Subianto, Prime Minister Modi will undertake a state visit to Indonesia from the 6th to 8th of this month. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since India-Indonesia relations were elevated to a comprehensive strategic partnership in May 2018. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from tomorrow till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. The Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity to exchange views on regional developments and issues of mutual interest. The monsoon session of the Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th of July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. Industry experts have said that ethanol blending program has not been introduced overnight but has been implemented through a measured, step-by-step and scientifically driven process. Addressing a press conference in New Delhi, former chairman and managing director of Engineers India Limited, Vartika Shukla said that ethanol blending program was placed in the public domain for a structured discussions and stakeholder consultations in 2018.
3: The ethanol blending program, particularly in 2018, it was in a structured manner put out for discussion and deliberation by all stakeholders. It is supported by scientific evidence, extensive testing by the automotive manufacturers and the agencies who support them, namely the Automotive Research Association of India. And also it is in line with the global best practices which is followed to green the fossil fuel to lower the carbon emissions.
2: In men's cricket, England defeated India by 4 wickets in the second T20 international of the 5-match series at Old Trafford in Manchester. India set a target of 191 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethel was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
4: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: और तो सास पतोह के लड़ाई से बढ़िया बहिमा बॉर्डर के लड़ाई।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते।
2: नमस्ते,
1: क्या हाल है?
2: मेरा बढ़िया, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। क्या हो गया है, सर्दी जुकाम हो गया है क्या?
2: नहीं,
1: गाना सुनना हुआ हिंदुस्तानी मूवी से उड़ जाएगी मैना।
2: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
1: सभी लोगों को। और बस,
2: और सब ठीक है ना?
1: आप लोगों का तो आवाज तो सेम ही होते जा रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। आप उनकी सिस्टर है क्या? पेड़ पौधा भी अलग अलग होता है, इंसान भी अलग हो जाता है, आप लोग का आवाज एकदम सेम होते जा रहा है।
2: हो जाता है कभी कभी सेम।
1: हाँ वही ना, कभी कभी शो आपका जब चालू होता है ना 5 बजे, तो उस टाइम किसी से कॉल पे बात होता है तो लगता है कि आप हैं या वो हैं। हाँ, एक रेडियो तो है कि आदमी को जोड़ के रखा है, अननोन आदमी भी इतना अच्छा से बात करता है।
2: जी जी। हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM। नमस्ते।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, वालेकुम अस्सलाम
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: रेशमा बोल रहे हैं पठानपुर से।
0: जी कैसी हैं आप?
1: हम क्या अपना बताओ।
0: हम भी अच्छे हैं।
1: नाश्ता हो गया मैम?
0: मेरा हो गया। आपका?
1: हमारा भी हो गया। तबियत ठीक है मैम?
0: तबियत ठीक है। और बताइए,
1: कल हुआ तो खूब।
0: कल तो बारिश बहुत हुआ था।
1: पानी तो आंगना भर गया था पानी तुम्हारे।
0: कल उसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा है। अच्छा है।
1: गाना सुना दीजिए मैम, रितेश कांडे के।
0: बताया कौन सा गाना?
1: हमरो के याद तहरावे लकीना ये जान।
0: अच्छा, और ये गाना किसी को सुनाना चाहिए?
1: आपको सुनवाएंगे और जीता लोग सुनता है रेडियो ये सभी।
0: जी जी बिल्कुल।
1: बहुत मुश्किल से फोन लगा मैं। दो हफ्ता से फोन लगी नहीं रहे हमारे। सोमवार का लगाना, शुक्रवार का, फिर आज लगा।
0: तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं।
1: सुनते
0: रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो,
3: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: लालबाग बोल रहे हैं।
3: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक है, बताइए।
3: मेरा भी ठीक है। क्या हो रहा है अभी?
2: धान रुकवा रहे।

0: अच्छा जी, तो बीज तैयार हो गया है।
1: बीज तैयार हो गया, बारिश से क्या पानी से अगर कुआ रहा है।
0: इतना पानी लगा हुआ है,
1: हाँ पानी लगा हुआ है।
0: ये सब तो बढ़िया है।
1: क्या ना आज का फिल्म है वो कर्म,
0: और गाना कौन सा
1: गाना है तीन दिया है जान भी देंगे वो सॉन्ग।
0: है? ओके, और सॉन्ग किसी को सुनाना भी है?
1: दूजी है, गुड़िया है, सूरज है, विकास है, दिलीप है, रंजीत है। थोड़ा गाना लंबा है, थोड़ा
0: हाँ, तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: मैडम नमस्ते।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 FM में।
2: आवाज पहचान रहे हैं?
0: विकास कुमार बोल रहा हूँ, हिमतापुर से।
1: अच्छा जी, हाँ हाँ पहचान गए अब।
0: और बताइए, और क्या हाल चाल है मैडम?
1: मेरा तो बढ़िया, आप अपना बताइए।
0: बस बढ़िया है।
1: क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो कंपनी में ही काम धाम थोड़ा डाउन चल रहा है अभी।
1: क्या हो गया है?
0: आज तो मैडम आपका आपका कॉल बहुत कोशिश नहीं करना पड़ा, आज तो बहुत जल्दी लग गया।
1: टाइम भी तो देखिए, टाइम हो गया, इधर 12:18 हो रहा है।
0: अच्छा,
1: तो इधर थोड़ा कम कम कॉल आता है इसीलिए।
0: अच्छा, 11 बजे बहुत ज्यादा आता है।
1: हाँ, 11 बजे से 12 बजे के बीच बहुत ज्यादा कॉल आते हैं, उधर बिजी रहता है, इधर थोड़ा स्लो हो जाता है।
0: बहुत बहुत बंदे लगाते हैं 11 बजे से। और बताइए मौसम उधर कैसा है गोपालगंज में?
1: मौसम ठीक ही ठाक, बारिश हुआ है।
0: अच्छा, कल का बारिश हुआ है?
1: तो आज थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब उतना गर्मी नहीं है लेकिन फिर भी है,
0: वही 20-25 का टेम्परेचर होगा।
1: हाँ हाँ,
0: इतना होगा। आज मेरे को पवन सिंह का आज भी गाना सुनवाइएगा, वो गाना नहीं है पिया दो ये जाम अपने हाथ से जाम, यही गाना।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सॉन्ग रेडियो रिंजन का जितना सुनने वाले हैं सबको।
1: अच्छा।
0: सबसे पहले आपको।
1: जी जी, चलिए ठीक है। और सब बढ़िया है ना?
0: और सब बढ़िया है जी मैडम।
1: जी जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।
0: ठीक है मैडम, ओके मैडम, नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: The phone can be bajti hai, to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसे हैं आप?
5: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
6: अच्छा है, मीना जी बोल रहे हैं।
5: ये क्या हाल चाल है?
6: ठीक है, अपना बताइए।
5: बस मेरा भी ठीक ही है।
6: हाँ सुनना है,
5: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
6: गाना नहीं है, चुन्नी में।
5: हाँ हाँ है,
6: वही गाना सुनना है।
5: ठीक है, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
6: आपको और साल लिखने वाले दोस्त सुना है उनको।
5: बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: बहुत बाद कॉल लगल बा हमार।
1: का हो गेल बा?
0: कॉल आते हैं बिजी बताओ तो खाली। हमारा गाना बाज रहा है 5 बजे। आज भी गाना सुना है अभी
1: तो बता दी, कौन सा गाना सुना है?
0: गाना बजा दें खेसारी लाल के, कौन अपने पसंद के बजा रहे हैं बजा के।
1: ना ये पड़ी तो रोवा बताई पड़ी।
0: ना सुना
1: दी। वो तो बारिश होते रहे तो बारिश के साथ कहे कि कौन गाना बढ़िया देख के बजा देता।
0: अच्छा, बारिश तो आज हम भैल रात में से धूप निकल बा, बहुत तेज धूप निकल बा। अभी मौसम तो ठीक बा, बारिश के मौसम नहीं है, मौसम रात के रहिए
1: अपने
0: पसंद को बजवा ले बजा दे।
1: अच्छा तो खेसारी लाल के गाना, चलिए ठीक बा। और ये गाना क्यों कितना है?
0: बिजली महतो, संतोष महतो।
1: अच्छा,
0: रमेश महतो।
1: चलिए फिर ठीक बा, गाना प्ले करता नहीं, सुनते रहे सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: बाबा।
1: अच्छा एगो और बात बताई, केकरा हाथ के खाना मिठाई लगे?
2: तहारा हाथ के।
1: अब केकरा हाथ के मिर्चाई लगे?
2: भौजाई के।
1: सो क्यूट बेबी। एक और बात बताइए,

0: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
4: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
7: नमस्कार
6: जी, मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, पेरनीवा जिला देवघर झारखंड से। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
7: बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
6: हम भी अच्छे हैं।
7: आप सुना दीजिए मैम, प्यासा सावन का गाना।
6: कौन सा सॉन्ग?
7: प्यासा सावन का है, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में है। जीत के बोल है वो मेरी चमक छल्लो, इस तरह से जीत के बोल है।
6: ओके, और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
7: जी, सबसे पहले मैम आपको और रेडियो रंजन के जितने लिसनर है सबो को, और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, मदन कोल हैं, प्रभुक हैं, राजकुमार हैं, किसी में कोल हैं, किसी में प्रकाश यादव हैं, उन सब सारे काफी को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
6: जी जी बिल्कुल, तो चलिए गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 एफ।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेम जी 94 FM में।
0: नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते।
0: बिजी कॉल नंबर हम डलर नहीं था
1: ना तो
0: बहुत है बिजी बटन।
1: अच्छा तो कॉल आई तो क्यों कहीं कह सका था बिजी है बताई।
0: फोन करे हम बहुत गजन होते फोन जल्दी लगा।
1: अच्छा
0: तो बताए कैसन बनी अच्छा बनी नो।
1: हाँ हम तो ठीक बने रहो, बताई रहो कैसन बनी।
0: हमने अच्छा बनी नशा पानी हो गया ना जी। जितना फोन कर वो सब हमारी फरमाइश कर लो। आज अपना मतलब सुना आज अगर अपना मतलब सुना हाँ सुना अच्छा लगे।
1: गाना प्ले करते नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रेंजन 90.4 FM
0: जी मैडम जी। नमस्ते।

0: प्रिंसिपल। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो,
1: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, नमस्ते मैडम जी।
6: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
5: भाटी जी बोल रही क्या? भाटी जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना से।
6: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
5: बस खाना खा रहे हैं और बरसात हो रही है हमारे इधर।
6: अच्छा जी, अभी बारिश हो रही है आपके यहाँ?
5: जी जी जी।
6: चलिए तो बढ़िया है।
5: और सॉन्ग सुनना था मुझे,
6: बता लीजिए कौन सा गाना।
5: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है राम अवतार।
6: और गाना?
5: गाना है तेरे बेवफाई का शिकवा करूँ तो।
6: और सॉन्ग कितने डेडिकेट भी है?
5: ये सबसे पहले यहाँ पो है गजरा सिंह लोधी है रेलाई से, और मांगीलाल जी कंदेल है मांगीलाल दाखल है बड़ा गाँव से, और गोपाल हो जाए ककवासा से। ये सॉन्ग कब आएगा?

0: हेलो
1: हेलो हेलो जी नमस्ते
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार ग्राम प्रधान पीड़िता परम बिहार से संजय कुमार सर।
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मेरा हाल खबर बढ़िया है। आप रिमझिम संपूर्ण परिवार कैसे हैं? अभी आप संपूर्ण परिवार कैसे हैं?
0: हम सभी ठीक है।
1: चलिए कामना करते हैं की अच्छा गया, स्वस्थ रहिए, आप लोग खुश रहिए, हम भी खुश रहे, अपना मनोरंजन करें, आप भी मनोरंजन कराइए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: मौसम बताइए थोड़ा कैसे है मौसम? हमारे पास तो बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: कल का बारिश हुआ है इधर, तो मौसम अभी फिलहाल ठीक है थोड़ा।
1: हमारे पास परसों बारिश हुआ था, कल का नहीं हुआ, परसों बारिश हुआ था। चलिए कभी इधर कभी उधर बारिश होता जाएगा, कभी इधर गर्मी कभी उधर गर्मी। गर्मी के दिन आया प्रकृति के नियम है तो चलता ही रहेगा उसका। हम लोग अपना फरमाइश में आया, पहले गाना हमारा बजा दीजिए। ऐसे करके गाना है ना, वही संस्कृत में कुछ डिस्कस आप कर सकते हैं
0: जी,
1: मित्र भी बात करते हैं कुछ। सबसे तो पहले डिस्कस करके आपको रेडियो इंजिन संपूर्ण परिवार को आज दोस्त में होगा सिखाना तमाम शादी जी को मैं उत्तम कुमार जी राम लक्ष्मण तो आगे प्रधान भाई कुर्दम से नजर सोनी नसी जिन खान दीपक दास ठाकरे तीन वाले मत पर जैसे गुडू सावन गुडू गिरी राजेंद्र यादव भारती संतलाल गौतम हमारे नाम भी जाना पहचान तमाम दोस्तों विशेष करके शंकर प्रसाद शंभू जी साथ मोहम्मद सलाह अंसारी मझोलिया का विशेष करके उनको सुनाते हुए अभी भी डालेंगे। नमस्कार
0: नमस्कार। रेडियो रूम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
2: जी मैम, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग,
2: मेरा नाम विजय कुमार है।
1: जी मैम, क्या हाल चाल है आपका?
2: ठीक है मैम। हाँ मैम,
1: क्या हो रहा है अभी?
2: अभी तो लाइट कटा हुआ है मैम, बैठे हुए हैं।
1: अच्छा,
2: गाना का फरमाइश था मैम, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं बोली।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
2: जी मैम,
1: बता दीजिए।
2: हमारे मनोज जी है, वीरेंद्र जी है, विजय जी है, राजेश जी है, सुरेश जी है, राजेश जी है, रूबी जी है, नेहा जी है, अर्चना जी है, सभी लोग बैठे हुए हैं एक साथ गाना सुनने के लिए।
1: ओके, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: जी मैम, थैंक यू।

0: हेलो
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: हम सारे से बोलते हैं नमाज प्रसाद।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल चाल ठीक बात, आपका बरसा हो रहा, धूप चढ़ा बहुत बात।
0: धूप तो हो गई बहुत तेज, गर्मी होती है बढ़ा था।
1: जितना बरसा हो रहा बेसी गर्मी हो जाएगा। सुने
0: बता दी,
1: गीत गा चल मुसाफिर गुनगुनाता चल।
0: हेलो,
1: हाँ
0: कौन सा गाना करनी है?
1: गीत गाता चल मुसाफिर गुनगुनाता चल।
0: गाना क्यों सुनाऊं के बा?
1: जितना लोग सुनता सब कुछ सुने, हमारे सब कुछ सुने।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो, मैं आसाम से महेंद्र राउत बोल रहा हूँ।
5: जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: मैं सुनने से कहा, हाँ फीलिंग तो है, माँ मेरे आँखों का सहारा है।
5: आपकी आवाज कट कट के आ रही है।
6: तो मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, इसलिए हाँ फीलिंग का है, माँ मैं तेरी आँखों का तारा हूँ, ऐसे कोई गाना एक है।
5: है
6: तो वह गाना सुने करूँगा।
5: और गाना क्यों सुना होगा?
6: हाँ सुनाने तो बात है, उमेश, मुकेश, सुनील, अनिल, महेंद्र राउत, शशि प्रभा, ऐसा ही लोग और आप और श्रोता।
5: अच्छा,
6: सुना दी।
5: तो चलिए फिर गाना प्ले करते, नहीं सुनते रेडियो रंजीम 90.4 FM।
6: बहुत अच्छा।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।
1: पप्पू कुमार पढ़ रहा हूँ ना, बड़रिया से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: जी मैम अच्छा है, अपना सुनाइए।
0: हमारा भी अच्छा है।
1: मौसम उधर कैसा है मैम?
0: मौसम तो अब तो धूप निकल रहा है, हल्का हल्का गर्मी महसूस हो रहा है। अब
1: तो बारिश हुआ है उधर, कल भी हुआ आज भी हुआ।
0: इस समय बारिश नहीं तो
1: कल बारिश नहीं हुआ है,
0: कल हुआ है, आज थोड़ी हुआ है।
1: हमारे यहाँ तो थोड़ा सा हुआ है, 10-15 मिनट बारिश हुआ। मैम गाना तो सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना?
1: मेरे पतली कमर लंबे बाल, हाय रे मेरी उम्र 16 साल।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: रेडियो रेंज जितने भी सुन रहे हैं सभी सुनेंगे।
0: ओके, और सब बढ़िया है ना?
1: जी मैम बहुत बढ़िया है, अपना सुनाइए। सब आजे लोग आते हैं।
0: तो चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंज 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
7: अरे सुबह से मैं परेशान हूँ, फिर जगह पकड़ा।
6: अच्छा, क्या हो गया है?
7: गाना सुनना था मुझे।
6: नाम बता दीजिए अपना।
7: मेरा नाम है बीरेंद्र शाह, पहली बार लगा है।
6: और कहाँ से हैं आप?
7: मेरा यहाँ बरौली थाना मेरा घर है।
6: तो क्या हाल चाल है आपका?
7: सब ठीक है सर।
6: अच्छा, तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा।
7: गाना एक पुराना गीत है, गुरु मानदास से गाया हुआ है, किया था रब से पहले।
6: कौन सा सॉन्ग?
7: जग में किया था रब से पहले, इस प्रकार रब से पहले। मैं बहुत दिन पहले देखा था फिल्म में। मिल जाएगा कि नहीं?
6: मिल जाएगा,
7: ढूंढिए उसको।
6: अच्छा, ढूंढेंगे। और गाना किसी को सुनाना भी है?
7: सारा दुनिया सुनेगी, हम भी सुनेंगे।
6: जी जी बिल्कुल,
7: बजेगा उस पर। तो रेडियो में सुनता हूँ बराबर, ठीक है ना
6: जी।
7: तो एक गाना कभी नहीं बैठता है, तो मैं सोचा चलो उसी गाना को मैं सुनना है।
6: अच्छा चलिए, ठीक है आपके लिए।
7: पंजाबी कलाकार है वो, मैं सुबह से लेकर सारा दिन सुनते रहता हूँ। विविध भारती हुआ, पटना हुआ, जितना प्रोग्राम है ना सब सुनता हूँ
6: जी।
7: अच्छा, सुबह में जी? सुबह के टाइम में
6: वही शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच बजता है।
7: अच्छा
6: जी, तो फिर गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: जी रंजन,
0: ठीक है, हाल चाल है आपका?
1: हम बढ़िया है।
0: और सब ठीक है ना?
1: तो बढ़िया है, काम हो रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं फोन से, रेडियो रंजन।
0: तो अभी बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा?
1: शुरुआत जी ये हटिया मूवी का गाना सुनवा जी, अक्षय कुमार का मूवी है।
0: और गाना कौन सा?
1: उसमें गाना है खबर छू जाएगी कल के अखबार में, घायल हुआ एक लड़का एक लड़की के प्यार में।
0: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: जी अपनी वाइफ को।
0: जी चलिए, फिर तो गाना प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे मेरे साथ यानी आरजे भारती के साथ। और अब हमारे स्टूडियो की घड़ी के कांटे इशारा कर रहे हैं समय हो गया है शो की समाप्ति का। यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो सोमवार बुधवार शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 12:30 के बीच हमारे नंबर 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और अपनों का भी। सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: भौजी मत लेके जाए, भौजी राजा कैमरे से दूर मत लेके जाए, भौजी हम तो हर पाप पर ताली भौजी।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: ध्वनि के तरंग 90.4 पर आप जिले की आवाज रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: बाय।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को।
1: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। ऑलराइट।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

विक्रम संवत 2083 अषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि दिनांक 15 जुलाई 2026 दिन रविवार के सुप्रभात रेडियो रिमझिम परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज सूर्योदय 5:14 पर होगा और सूर्यास्त 6:46 पर होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। दो बात की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। तो श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5 बज चुके हैं। आइए शुरू करते हैं आज का प्रातःकालीन सभा भक्तिमय गीतों के साथ।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।